नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। पिछले एपिसोड में हमने गुरु की उस कृपा को समझा जिसने हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाकर हमें अनंत के दर्शन कराए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है?

कि जब शिष्य को वह अनंत सत्य दिख जाता है तब शिष्य का अपना अस्तित्व कहाँ जाता है? क्या वह गुरु से अलग बना रहता है या कहीं खो जाता है? आज का दोहा मिलन की उस पराकाष्ठा का है जहाँ दो मिट जाते हैं और केवल एक शेष रहता है। श्रोताओं, कबीर आज जिस मिलन की बात कर रहे हैं वह कोई साधारण मेल नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा में, या यूं कहे कि शिष्य का गुरु के ज्ञान में विलन हो जाना है। कबीर ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है, पानी और नमक का। उनका दोहा है, कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लून, जाति पाति कुल सब गया, नाव धरोगे कौन।

कबीर इस दोहे से समझा रहे हैं कि इसका मर्म अद्वैत की उस स्थिति में छिपा है जहाँ पहुँचकर द्वैत यानी दो का भाव मिट जाता है। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसा गरवा यानी गौरवशाली आत्मज्ञानी और तत्वज्ञान से पूर्ण गुरु मिल गए जिनकी कृपा ने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उनके ज्ञान के स्पर्श से मैं शुद्ध चैतन्य में एक इस कदर लीन हो गया कि अब मुझ में और उस विराट सत्य में कोई भेद नहीं बचा। यहाँ कबीर एक बहुत ही सरल लेकिन अद्भुत उदाहरण देते हैं, रली गया आटे लून, जैसे आटे में नमक मिलकर एक हो जाता है और उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही कबीर का अपना स्व अर्थात अहंकार और अस्तित्व गुरु के ज्ञान में विलीन हो गया। यहाँ साधक गुरु और ईश्वर ये तीनों एक हो गए हैं। जब नमक पानी या आटे में घुलता है तो वह अपनी पहचान खोकर उस पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह जब शिष्य को तत्वज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जाति पाति कुल और यहाँ तक कि उसका नाम भी अर्थहीन हो जाता है। कबीर पूछते हैं, जब मैं बचा ही नहीं तो अब तुम मेरा क्या नाम रखोगे? अब तो मैं वही हूँ जो मेरे गुरु हैं, जो यह ईश्वर हैं। यह साधारणीकरण की जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, वह विश्व का हो जाता है। अब वह न हिंदू है न मुसलमान, न ऊंचा है न नीचा, वह तो बस उस ज्ञान का हिस्सा है। दोस्तों, हम अपनी पहचान को लेकर कितने सजग रहते हैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा खानदान, लेकिन कबीर सिखाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इन छोटी पहचानों को किसी महान उद्देश्य या महान गुरु के ज्ञान में विलीन कर देते हैं। तो विचार कीजिए, क्या आप नमक की तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं या पानी में घुलकर अमृत हो जाना चाहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

लाख अस्सी बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का चौथा मार्ग तूने दिखाया। सम्यक कर्मात्, सम्यक कर्मात् यानी योग्य वर्तन, योग्य वर्तन सिखाता है सम्यक कर्मात्। दूसरों के हक की इज्जत करना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, अन्य लोगों का मान सम्मान रखना, यह कृति सम्यक कर्मात् है। जीवन के बुनियादी नियमों के साथ सुसंगत वर्तन करना सम्यक कर्मात् है। जब कभी किसी का वर्तन सामाजिक नियमों से बद्ध हो तब समझना उनका वर्तन सम्यक कर्मात् है। नियम विरोधी क्रिया या नियम बाह्य वर्तन सम्यक कर्मात् में त्याज्य माना जाता है। हिंसा न करना, व्यभिचार, काम वासना का स्वेर होना तथा नहीं करना चोरी, बोलना नहीं झूठ, करना नहीं नशा, सम्यक कर्मात् का अनुपालन करते समय मनुष्य को रहना होता है सदा सतर्क। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का पांचवा मार्ग तूने दिखा दिया, सम्यक आजीविका का। आजीविका का संबंध चरितार्थ से है। होते हैं अनेक मार्ग चरितार्थ चलाने के, कुछ होते हैं बुरे, कुछ होते हैं अच्छे। जिस मार्ग के कारण अन्याय होता हो दूसरों पर, वह मार्ग बुरा समझना। सम्यक आजीविका में स्वार्थ की खातिर दूसरों को पीड़ा पहुंचाना नहीं और बिना अन्याय किए खुद की जीविका चलाने तक कमाने का मार्ग, जिसे सम्यक आजीविका से संबोधित किया गया है, यह मार्ग समाज मान्य मार्ग है, जिससे त्याग की भावना का संस्कार परिपोषित होता है, परोपकार की भावना बढ़ जाती है, विकसित होता है संस्कृति का सूत्र। कहते हैं जो खुद खाए खुद की रोटी उसे कहते हैं प्रकृति, जो छीन लेता है रोटी दूसरों की वह है विकृति, और जो अपने हिस्से की रोटी दूसरों को देता है वह है संस्कृति। सम्यक आजीविका का स्वरूप संस्कृति में है विद्यमान। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का छठा मार्ग तूने दिखाया, सम्यक व्यायाम। अविद्या नष्ट करने का पहला टप्पा होता है साध्य व्यायाम से। सम्यक व्यायाम नकारता है अंधश्रद्धा, कर्मकांड और काल्पनिक ग्रंथों को, प्रमाण विहीन विचारों को, अविद्या यानी दुख। इस दुख के कारागृह से अविद्या नष्ट हुई तो बाहर के विवेकी दरवाजे तक स्वातंत्र की अनुभूति पहुंचाई जा सकती है खुलेपन के साथ। उसके लिए उपयोगी है सम्यक व्यायाम। प्रतिरोध करता है सम्यक व्यायाम अकुशल चित्तवृत्ति का, जो विरोध करती है आर्य अष्टांगिक मार्ग का। पोषक कार्य करता है सम्यक व्यायाम कुशल चित्तवृत्ति निर्माण करने में, जो लाभदायक और सहायक होती है आर्य अष्टांगिक मार्ग को। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम का लाभ चित्तवृत्ति विकास एवं वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक।

नमस्कार, ओम शांती। चलांकल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलतीजे अर्णव पियुषांचे। चिंतामणीचे गाव, कल्पतरूचे आरव और बोलतीजे अर्णव पियुषांचे। पियुष अमृत, अमृत जैसे बोल, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू था पिछले एपिसोड में। अमृत क्या है, इसके बारे में हमने कुछ थोड़ी सी चर्चा की। बोलतीजे अर्णव, बोलना, बोलना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान को जबान तो भगवान ने सबको दे दी है। जानवरों को भी जबान है, इंसान को भी जबान है, लेकिन जबान चलाना इंसान जानता है, जानवर नहीं जानता। जानवर तो सिर्फ खाना खाने के लिए जबान का इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान जबान का इस्तेमाल करना सीख गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जबान फिसल जाती है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भूल जाता है। बोलना किसको है, बोलना कब है, बोलना कैसे है, बोलना क्यों है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलतीजे अर्णव पियुषांचे, जो बोल है संतों के, जो अच्छे लोगों के बोल है, वो अमृत जैसे है। क्योंकि ये जो बोल है ना, वो जबान बोलती है, जबान के जरिए बोल जाते हैं, और इसलिए अगर जबान ठीक चले तो ये अमृत हो जाता है, नहीं तो जहर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जहरीले बोल। हमारे यह जो कहावतें है ना, वो बहुत अच्छी है। जो पुरखों ने हमारे कहावतें बनाई होगी तो बहुत ही उसके ऊपर विचार किया होगा। हम हमेशा कहते हैं सोच समझ के बोलो। क्या कहते हैं? सोच समझ के बोलो। इसका मतलब ये है कि पहले सोचो, फिर समझो और फिर बोलो। हम क्या करते हैं, बहुत बार आप सोचते होंगे, आप समझते होंगे, आप मुझसे सहमत भी होंगे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पहले बोल लेते हैं, पहले बोल लेते हैं और फिर समझ में आता है कि हमने क्या बोला। समझते हैं, बोलने के बाद फिर समझते हैं हमने क्या बोला, किसको बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, और फिर ये सब जब महसूस होता है, ये सब समझ में आता है, तब फिर इसके ऊपर सोचते रहते हैं कि हमने ऐसे क्यों बोला, होता है। और यही तो गड़बड़ है। ये जबान जो है, एक जबान जो है गलत इस्तेमाल हो गई तो उसके ऊपर महाभारत हो गया। कहानी है कि एक द्रौपदी भरी सभा में, मय सभा में जब दुर्योधन गिर गया, उसको पता नहीं चला पानी कहाँ है और जमीन कहाँ है, क्योंकि मायावी नगरी थी। और जब दुर्योधन गिर गया तब द्रौपदी हंसी और फंसी, एक बार हंसी और फिर फंसी, क्योंकि हंसने के बाद जहरीले शब्द निकल गए मुंह से। अंधे की औलाद अंधी, बस ये दो तीन शब्द जो है वो सुनने के बाद महाभारत हो गया, ऐसे सबका मानना है। तो क्या हो गया, जबान का गलत इस्तेमाल हो गया, सही इस्तेमाल नहीं हो गया, पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, बोल दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही करना पड़ेगा कि पहले सोचना है, समझना है और फिर बोलना है। अगर ये नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोलतीजे अर्णव पियुषांचे, बोल जो है, माउली जो है ना,
हर शब्द का इस्तेमाल जो है वो बड़े प्रेम से, बड़े सोच समझ के करती है, और इसलिए उसके ऊपर चिंतन करने में बड़ा मजा आता है। एक एक शब्द जो है इसका प्रयोग जो किया है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से अमृत। अमृत कब होगा? जब जबान ठीक चलेगी। और यह जबान भी देखो कैसी है। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो जबान को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सहमत हैं मुझसे? देखिए, जबान को चाट चाट अच्छा लगता है, चाट मसाला, पानीपुरी, भेलपुरी, सेव बटाटा पुरी, मिसल, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर स्प्राउट्स, कम शुगर वाला, कम नमकीन, ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी है लेकिन जबान के लिए ठीक नहीं है। हम भगवान का नाम लेते समय कितना समय लगता है ये काउंट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अगर गप्पे लड़ाने हैं, बातें करने हैं, तो घंटों कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बोलती जे आर्णव पीयूषान से, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जब मन में वो है, भगवान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति मन में है, तो बोल अपने आप मीठे हो जाएंगे। और अगर स्मृति नहीं है तो भरोसा नहीं है कब कड़वे हो जाएंगे, क्योंकि यह जबान जो है, लेकिन उससे जबान बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी भी है, उसके पास कुछ गुण भी है, क्योंकि ये गुण ऐसा है कि वो है बहुत नरम, सॉफ्ट, भले उसके शब्द जो है उससे घाव होते होंगे, कहते हैं ना तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन जबान के घाव भरते नहीं है, तो शब्दों से वार हो जाता है, शब्दों से घाव हो जाते होंगे, लेकिन जबान बहुत सॉफ्ट है। कहां रहती है? 32 दांत है उसके बीच में रहती है, लेकिन खुद को बचाती रहती है, उसको मालूम है बच के कैसे रहना है, 32 दांतों के बीच में भी कैसे बच के रहना है यह जबान को मालूम है, लेकिन मदद भी करती है। जब खाना खाते हैं, अगर जबान ही नहीं चली तो खाना खा नहीं सकते, इसलिए जबान मीठी है तो अच्छी है, कड़वी है तो गड़बड़ है। तो अगर उसे मीठी करनी है कौन करेगा? हम करेंगे जब हम सोचेंगे, समझेंगे और बोलेंगे। इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, ऐसे लोग होंगे जो कल्पतरुं के बगीचे होंगे, ईश्वर निष्ठ होंगे, मांदियाड़ी, बगीचा, आरव और चिंतामणि से गाव, और ऐसे सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनसे मुंह से जो बोल निकलेंगे, उनके मुंह से जो बोल निकलेंगे वो मीठे ही होंगे और अमृत जैसे होंगे, और वो भी अमृत एक प्याला नहीं है, आर्णव समुद्र जैसा महान, ऐसा आर्णव होंगे। और इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, क्या कमाल है, हमारे सामने चित्र खड़ा हो गया है। और फिर माउली कहती है, चंद्रमेजे अलांचना, मारतंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो। तो चांद कैसा है? चांद बहुत खूबसूरत है, ईद का चांद, चौदहवीं का चांद, क्या चांद है। अगर बहुत कोई सुंदर है तो बोलती है चंद्रा जैसा, चांद चांद जैसा। एक लाजरा साजरा मुखड़ा, चंद्रावाणी फूल लागा, चंद्र, वो जब कोई सुंदर स्त्री है उसका वर्णन करता कवि है तो वो चांद जैसा कहता है। और छोटा बच्चा है
तो भी चंदा प्यारा है क्योंकि उसको मामा कहते हैं, माँ का भाई चंदा मामा। और फिर चांद, ईद का हमारे मुस्लिम बांधव जो है वो भी ईद का चांद, चांद महत्वपूर्ण है। और हमारी माताएं जो है वो पूजा करती है करवा चौथ, फिर भी चांद। और गणेश जी के जो भक्त है वो संकष्टि चतुर्थी करते हैं, वो भी चांद। ऐसा चांद है, इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, लेकिन गणेश चतुर्थी पे चांद नहीं देखना है, दाग लग गया। चंद्रमेजे अलांछना, लांछन चांद के ऊपर लांछन है, लेकिन माउली कहती है ऐसे संत है, ऐसे फरिश्ते है, ऐसे महान आत्माएं है, वो चांद जैसे है लेकिन अलांछित है, लांछन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा विस्तार से इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

नमस्कार, ओम शांति। चंद्रमेदे अलांचन मारतंडदे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु। किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नितिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। यहां पसाए दान ऑफिशियली मीन्स जो मांगना है वो पूरा हो जाता है। तो क्या कहा? चंद्रमेदे अलांचन। पिछले एपिसोड में हमने चंद्रमा चांद उसमें अलांचन लांचन इसके ऊपर चर्चा की। चंद्रमा की और एक खासियत है जो मुझे याद आई कि पूनम का चांद होता है, पुनवे का चांद, पुनो का चांद, तब कहते हैं कि हाई टाइड आती है, भरती आती है समुन्दर को, सागर को भरती आ जाती है जब समुन्दर वो देखता है पूरा है और समुन्दर को अट्रैक्शन होता है, ऐसे मानते हैं पुनवे का चांद, पूनम का चांद, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। आत्मा की संपूर्णता जो है वो पूनम का चांद है, इसलिए पूरा का पूरा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे धीरे कम होते जाता है, अमावस में पूरा ब्लैकआउट और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करते हुए वो बढ़ते जाता है, इसलिए कला कहते हैं उसका, सेलेस्टेल्स। तो ये आत्मा की भी ऐसी कला है और जब आत्मा की संपूर्णता आ जाती है, पूर्ण स्वरूप, तब सागर को भरती आ जाती है। सागर कौन? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, परमात्मा। तो खुदा मेहरबान हो जाता है जब आत्मा संपूर्ण स्टेज पे आ जाती है। और ये आत्मा की संपूर्ण स्टेज जिसको हम फरिश्ते कहते हैं उनका ही वर्णन माउली ने किया है। जे खड़ांजी व्यंकटी सांडो से शुरुआत है और चंद्रमेजे अलांचन मारतंड जे तापहीन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो दो। तो चंद्रमा देखा हमने, अभी माउली मारतंड का भी उपमा देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो मारतंड, मारतंड का मतलब है सूरज, और अपनी सोलर सिस्टम में ग्रह तारे जितने हैं उसमें से सूरज जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वो स्वयं प्रकाशित है। सूरज को किसी की रोशनी देने की जरूरत नहीं है, खुद रोशनी पैदा करता है, स्वयं प्रकाशित है और इसलिए परमात्मा को भी स्वयं प्रकाशित कहते हैं। आपने जो मराठी जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्होंने भी ये अभंग या गाना सुना होगा, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांचा नाथा तुज नमो, एकनाथ महाराज का है। उसमें वर्णन किया है सद्गुरु माझा आनंद सागर। सद्गुरु कैसा है? वो आनंद का सागर है। त्रैलोक का आधार गुरु राव, त्रैलोक या तीनी लोकों का आधार जो है वो गुरु राव हमारा सदगुरु है। तो ये देहधारी हो सकता है सदगुरु कोई? क्योंकि सदगुरु जो है, जितने देहधारी सदगुरु है वो तो बिल्कुल ही 100% अच्छे है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी हर एक की मानना अलग अलग है। देवताओं को भी कोई ये देवता को मानता है, कोई ये देवता को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है देवता, क्योंकि इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा जो है, इसलिए ना एकनाथ महाराज इन्होंने कह दिया सद्गुरु माझा आनंद सागर त्रैलोक के आधार गुरु राव, गुरु राव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित। कहां से आया हम? स्वयं प्रकाशित। जो स्वयं प्रकाशित है वो परमात्मा है
और इसलिए उसको सूरज की उपमा दी जाती है, क्योंकि सूरज भी स्वयं प्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है, और इसलिए स्वयं भू भी कहते हैं, परमात्मा को स्वयं भू कहती है। बाकी सबको किसी ने बनाया है, सब देवताओं को किसी ना किसी ने बनाया है, लेकिन एक परमात्मा जो है, जो शिव का लिंग, जो शिवलिंग जो रूप में पूजा पूजन करते हैं, जिसे हम स्वयं भू कहते हैं, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म शंभू, शंभू महादेव। तो ये सूरज कहां से आई बात, सूरज मारतंड से ताप ही न, तो ये नव ग्रहों का, ग्रह और ताराओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसा सूरज भगवान जैसे मानते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है, वो तापदाई है। आपने अनुभव किया होगा, अभी समर सीजन शुरू है, बारिश आ गई है, लेकिन समर सीजन तो अभी अभी पूरा हो रहा है, और आपने अनुभव किया होगा कि समर में दोपहर को बाहर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। मारतंड से ताप ही न, तो ये कभी कभी सूरज तापदायी हो जाता है, लेकिन माउली कहते हैं ये संत सज्जन जो है वो मारतंड तो है, लेकिन तापहीन है। और फिर ये तापहीन है, और ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो ऐसे मारतंड तापहीन है, लेकिन वो सदा सज्जन है, कभी सज्जन कभी दुर्जन नहीं है, कभी सुर कभी असुर नहीं है। हमारे मन में सुर भी है असुर भी है, लेकिन सुर कब पैदा होता है और कब बेसुरा हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए हमारी जिंदगी कभी सुरीली हो जाती है और कभी सुर ही नहीं लगता, कहा सही सुर है, कई ताल है, तो बेताल हो जाता है, बेसुरा और बेताल। और जब परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा की याद आती है, उसके सुर में सुर मिला लेते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मेरा कौन, मैं, और तुम्हारा भगवान, उसके सुर में अगर सुर मिलाते हैं तो जिंदगी सुरीली हो जाती है। तो सज्जन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो सदा सज्जन, ये संत जो है, ये फरिश्ते जो है, वो सदा सज्जन है, इसलिए माउली ने उनको उपमा दी है सदा सज्जन। जैसे शिव को भी सदा शिव कहते हैं, शिव मीन्स कल्याणकारी, और सदा शिव मीन्स सदा कल्याणकारी, कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी नहीं है, भगवान कभी श्राप नहीं देता, भगवान हमेशा हमें अच्छा ही देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, शुभ कामना देता है, हमें लेने की ताकत चाहिए, और ये देने के लिए, वो जानने के लिए और आपको समझाने के लिए फरिश्ते आते हैं। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो तू, सोयरा मराठी में शब्द है, सोयरा मीन्स क्या है, हमारे जन्म से रिश्ता नहीं है, सोयरा मीन्स जन्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में रिश्ता हो जाता है, सोयरिक, शादी ब्याह के मामले में कहते हैं सोयरिक, जिसको हिंदी में हम रिश्ता कहते हैं। अगर किसी के पास आप लड़की मांगने जाओ, बेटी मांगने जाओ, तो बोलते हैं रिश्ता लेके गए, या रिश्ता करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, बेटी वाले जाते हैं तब रिक्वेस्ट करते हैं रिश्ता, मीन्स पहले रिश्ता नहीं है लेकिन बाद में रिश्ता जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, बेटी के भलाई के लिए जोड़ना है, और वो उस फैमिली में जाती है और उनका भला भी करती है। तो ये रिश्ता जो है जोड़ना, और अगर किसी बड़ी व्यक्ति है, बड़ी हस्ती है, उसके साथ हमारा रिश्ता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्ते जो है, ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो माउली कहती है ऐसे फरिश्ते हैं जो कल्पतरुओं के बगीचे हैं, आरव चिंतामणियों के गांव है, चांद से भी शीतल है, और मारतंड सूरज से
तापद सूरज जैसे तापदायक नहीं है लेकिन प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे लोग ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे होतु। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना है तो क्या होगा, ये लोग आते हैं और हमारा रिश्ता भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं, मियाँ बीबी, हिंदी में भी कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भले हमारे इस्लाम भाई है वो काजी कहते हैं, हमारे हिंदू भाई है वो ब्राह्मण के कहते हैं, या क्रिश्चियन भाई होंगे वो पादरी कहेंगे, है तो भाई रिश्ता जोड़ने के लिए। और ये रिश्ता जो है हमारा फरिश्ता जो है, जिससे फर्श से रिश्ता नहीं है, ऐसे फरिश्ते आते हैं और भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। अब ये रिश्ता जोड़ने के बाद क्या करना है इसके बारे में चिंतन करेंगे। अभी आखिरी पड़ाव है अगले एपिसोड में, और पसायदान जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ हैं और जिंदगी को एक नई नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं, आज कुछ नई बात शुरू करते हैं। अभी तक हम बहुत सी बातें अपने जीवन से जुड़ी जान रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है कि जीवन की हर सिचुएशन हम पर हावी हो जाती है। कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको बदलें, नहीं बदल पाते हैं। धीरे धीरे उसको बदलना भी छोड़ देते हैं और हालात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या यही है ज़िंदगी? कई बार मन करता है कि ये ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कौन से ऐसी कौशल हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हैं लाइफ स्किल्स। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, शुरू यहीं से करते हैं कि क्या हुआ है ज़िंदगी में कि प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी हो जैसी हमने इमेजिन की हुई है, नहीं हो पाती है, और फिर हम कहीं ना कहीं गिव इन करना शुरू कर देते हैं, और फिर देन वी से कि लाइफ मीन्स कॉम्प्रोमाइज। ज़िंदगी का मतलब ही है कि एक्सेप्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ऐसे ही जीना है। सचमुच क्या ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है?
2: नहीं, बिल्कुल आपने जो बताया वही बात सिद्ध करती है। आज लोग भी कहते हैं, लोगों से पूछो भी कि भी कैसे हो, तो कहेंगे चल रहा है, या तो बहुत प्रॉब्लम्स है,
0: जी रहे हैं,
2: हाँ, या तो नहीं गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ने उनके रिस्पॉन्स ही प्रूव करते हैं कि भी लोग इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहते। अब जितने सुसाइड्स को भी आज देखो, भी बच्चों में भी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, वह भी प्रूव करता है कि भी सीरियस प्रॉब्लम है कहीं ना। इट्स नॉट एन स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स नो रियली डीप रूटेड सीरियस प्रॉब्लम कि जिसको लाइफ स्किल्स को समझ करके हमें दूर करना चाहिए।
0: शिवानी, गाड़ी पे आते हैं फिर से आपके साथ लोग गाड़ी को बहुत एसोसिएट करते हैं, क्यों धक्का लगाना पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कमी है? क्या हमने इंजन की ओवरहॉलिंग नहीं की? व्हाट हैज रियली हैपेंड?
1: सबसे पहले तो क्या हमें गाड़ी चलाना आता है? बाकी सब भी तो बाद में करेंगे ना। गाड़ी में पेट्रोल भी तो मैं तब भरूंगी तब मुझे पता हो कि वो पेट्रोल टैंक खोलने वाला जो नॉब है वो कहाँ पर है। हाउ मच डू आई नो अबाउट माय कार? एंड इट्स नॉट अबाउट द कार, इवन इफ यू लुक एट इट्स अबाउट द ड्राइविंग। हाउ मच डू आई नो द स्किल? इवन अगर गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, ड्राइविंग की स्किल तो आनी चाहिए ना। दबाना है ब्रेक, दबा दिया एक्सेलरेटर। जो टाइम चाहिए कि हमें एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए, उस टाइम कई बार हम बहुत फास्ट चले जाते हैं। कोई टाइम चाहिए जो हमें फास्ट कुछ करना है, हमें एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो तब दबाना था एक्सेलरेटर, दबा दी ब्रेक, ब्लैंक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अब क्या करना है जीवन में ना। तो वी से माई लाइफ इज कम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड इट नॉर्मली कम्स टू अ स्टैंड स्टिल एट अ पॉइंट वेर इट एक्चुअली नीड्स टू बी गोइंग एट अहेड। सो जस्ट बिकॉज आई डोंट नो when to press the accelerator, when to press the brake. So, जैसे हम जीवन की ये बहुत सारी skills सीखते हैं, अपनी गाड़ी कैसे चलानी, अपना computer कैसे चलाना है, even अपना mobile कैसे use करना है, साधन सारे हैं, चलाना ना आता हो तो उसका पूरा use हम नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई हैव अ मोबाइल बट आई डोंट नो कि उसका कैमरा कैसे वर्क करता है या उसका यू नो बाकी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आई वॉन्ट बी एबल टू यूज़ इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। एंड तो मेरे पास चीज़ है लेकिन मैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही जिस तरह से मुझे करना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सेम विद लाइफ, आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, आई हैव द यू नो पावर टू टेक इट द वे आई वॉन्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है इट जस्ट सीम्स टू बी गोइंग इन एवरीवेयर अदर डायरेक्शन।
0: खिंच जाती है, कभी वो पिक्चर खराब हो जाती है हमसे। क्या हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही तरह से उसे सॉल्व करें, वो क्यों नहीं कर पाते? जैसे कहा सर शिवानी आपने कि स्टैंड स्टिल हो जाती है जिंदगी। कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में और हम चाहते हो, क्योंकि सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, लोग नहीं चेंज कर रहे होते, तो हम नहीं उसको पार कर पाते।
1: आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है, जीवन ऐसी हो जाती है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, लोग नहीं चेंज हो पा रहे, तो इसलिए हम स्टैंड स्टिल हो गए। इसका मतलब मेरी गाड़ी रुक, बाकी सब लोग चला रहे हैं। सी आई जस्ट सेड कि माय सी इवन इफ आई एम स्टक इन द ट्रैफिक जैम, लेट्स से आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां, फिर भी मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माय वे इवन थ्रू अ बिग मेस. सिमिलरली अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भी मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माय वे कि मुझे कैसे टर्न करना है, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ फास्ट जाना है. बट हम आजकल ये कह रहे हैं उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा एक्सीडेंट तो होना ही था. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज द स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सीरीज. कि यस इट्स अ जर्नी एंड इट्स लाइक अ जर्नी ऑन द रोड, जहाँ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, सबकी गाड़ियाँ अलग अलग, सबका तरीका चलाने का अलग अलग. बहुत सारे लोग हमें आसपास मिलेंगे जो थोड़ा सा गलत तरह से भी चला रहे हैं. यू नो नाउडेज भी से कॉम्पिटिशन, गलत तरह का कॉम्पिटिशन, समटाइम्स भी से ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें हैं. लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं तो मेरे हाथ में क्या है? इट जस्ट मीन्स कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा ठीक से नहीं चला रहे, बट फिर भी मेरी गाड़ी मेरे हाथ में है. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट कीप ऑन यू नो ब्लेमिंग that other people are not driving well. Always on the road, we will have different kind of people. Koi kisi tarah chalayenge, koi kisi tarah chalayenge. Mera focus apni journey par hona chahiye. Aur uska control mere paas hona chahiye. Jaise hi control bahar de diya, phir to then there is nothing much left to do. So what we want to do in this series is get back the control. To lead my life the way I want to lead it, not the way other people and situations are making me lead it. That is the most important thing.
2: Very true. एक बात अगर ये भी आप देखेंगे ना, मनोविज्ञान में भी मानने लगे हैं कि आज हमारा locus of control external हो गया है, ना बाह्य चीजें हमें control कर रही है. वास्तव में हमारा control internal होना चाहिए. बस ये बात भी अगर अच्छे से हम चर्चा कर रहे, लोग इस बात को समझ ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. और यही कला सीखनी है कि कैसे हमारा जो कंट्रोल है वो हम इंटरनल लाए.
0: नहीं, पहले हमसे जो गलतियां हुई, मैं वही बार बार कर रही हूँ कि उनको एक बार देखें कि क्या हमने रॉन्ग साइड चलाना शुरू किया है.
2: गहराई से हम सोचे दो प्रकार से. आउटवर्डली अगर हम सोचे तो गलती यहाँ पर हुई है कि हम बाह्य बातों पर डिपेंडेंट हो गए. यह समझने लगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं सदा के लिए शांत रहूंगा, मेरी पोस्ट पोजीशन बड़ी हो जाएगी, जितना बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाएगा. परंतु ये वो एक बहुत बड़ी गलती कर ली. वह चीजें भल जरूरी है, ये शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, परंतु वह सुख नहीं दे सकती, वह हमें सदा के लिए आनंद नहीं दे सकती. बस इसके कारण एक तो हुआ, दूसरी बात कि हम लोगों पर भी डिपेंडेंट हो गए और रिलेशन में डिपेंडेंट हुए. इसके कारण फिर वह सदा के लिए व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता है, तो और हम दुखी हुए, नहीं और निराश हुए, इरिटेशन आ गया है ना, हेट्रेट आने लगी, इस प्रकार की सभी नेगेटिव बातें डेवलप हुई. और एक गहराई से अगर बात देखें तो आज हम जो चीज़ हमें जीवन में चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आउटर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, और जो आउटर एनर्जी है वह हमें अलग अलग दिशा में ले जा रही है.
0: आउटर एनर्जी मींस व्हाट?
2: आउटर एनर्जी ऐसा कहेंगे कि मैं अच्छा दिखूं, है ना, मेरा शरीर अच्छा हो, या तो जैसे मैंने कहा मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी कार दूसरों से बड़ी होनी चाहिए. ये जो सब हम प्राप्त करने के पीछे एनर्जी को लगा रहे हैं वह है आउटर एनर्जी.
0: अच्छा, अपनी ही ऊर्जा,
2: अपनी ऊर्जा,
0: अपनी ही कर्म की ऊर्जा जो है ये इन सब की प्राप्ति में, हाँ,
2: बाह्य चीजों की प्राप्ति में लगा रहे. और इसके कारण एक तो वो वेस्ट होती है और फिर अल्टीमेटली हमें लगता है कि मेरे में खोखलापन आ गया. आज देखिए तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन इनर वैक्यूम है. परंतु अगर हम इनर एनर्जी को यूज करने लगे तो एक तो वह सेव होगी, थोड़ी सी एनर्जी में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, और इनर एनर्जी से आपको सही दिशा भी मिलेगी.
0: सर, एक मैं को बात ये जाननी है कि इनको प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी. सी, अगर मेरे को गाड़ी चाहिए, चलो मैं उसे ये नहीं कहूँ कि मुझे सुख प्राप्त होगा, पर गाड़ी तो चाहिए ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कुछ भी है, या प्रोफेशनली सक्सेस तो चाहिए, रिश्तों में भी संबंधों में भी मधुरता चाहिए, या बंगला कुछ एक कम्फर्ट चाहिए आज के वक्त में, तो उसको करने के लिए ऊर्जा चाहे वो बाहर की, मेरी अपनी ही ऊर्जा मुझे इस्तेमाल तो करनी ही होगी।
1: आज मॉर्निंग में हमने किसी से पूछा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बच्चा, अच्छा मकान। एंड देन ही सेड आई कैन गो ऑन, द लिस्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। आई सेड ये लिस्ट कब तक चलेगी? ही सेड जीवन भर मेरे पास ये लिस्ट बहुत लंबी है। एंड लिस्ट में हर वर्ड आ रहा था जो चाहिए, क्योंकि ये सब होगा तो मैं खुश होऊंगा, एंड अच्छा चाहिए। यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज द वे ही केप्ट सेइंग अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा। नो वेयर ऑन दिस लिस्ट आई एम देयर कि मैं अच्छा ना, आप अच्छे,
0: तो
1: आप
0: अच्छे,
1: बस that is the only where the what you said, what mistake have we made, then that is the mistake.
0: मैं अच्छी नहीं हूँ,
1: see it's not कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो वो अच्छे नहीं है। सब जो हैं जैसे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छे चाहिए मतलब जो इमेज मैंने क्रिएट किए वैसे वाले वो चाहिए। अगर वो वैसे वाले होंगे देन आई विल बी हैप्पी। तो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया?
0: उस इमेज पे, उस इमेज की प्राप्ति पे,
1: उनके पास, कि वो वैसे होने चाहिए तब मैं खुश होऊंगा। अब ये नहीं होने वाला है। लेट अस वेक अप टू दिस रियलिटी। अवेकनिंग इज दिस, वेक अप, उठ जाएं, जागृत हो जाएं कि ये जो हम बार बार अच्छी पत्नी, अच्छा दोस्त, अच्छा बच्चा, ये अच्छा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं। और हम कहेंगे हम तब खुश होंगे जब वो रिश्ता इस डेफिनेशन में फिट होगा।
0: तो हम एक्सेप्ट तो फिर भी करके बैठे ही हैं।
1: सी तो फिर हम खुश नहीं है ना।
0: वो अब
1: सी अगेन, आपने तो अपनी ना, आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये लिखा कि मुझे ये चाहिए, तो अगर आपको जब तक वो नहीं मिलेगा देन यू आर वेरी एम्प्टी।
0: तो हम चाहत भी सी हम see? चाहत भी हम खत्म कर दें।
1: सी इट्स नॉट अबाउट चाहत खत्म
0: कर दें, पीपल आर सेइंग यू नो कि बिना चाहत, उन्हीं से अगर आप आगे बात करेंगे तो उनसे कहेंगे चाहत तो खत्म करनी, अगर चाहत भी ना रही तो लोग बोलते हैं हमारे पास फिर बचा क्या, एक वही ड्रीम से तो लेकर चल रहे हैं।
1: सो देन वी आर ऑलवेज एम्प्टी ना, जैसे बात हुई कि हमेशा मेरा हाथ ऐसे है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आएगा देन आई बी बेटर, ये आएगा देन आई बी बेटर। और वो उसने बहुत क्लियरली कह दिया लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, कि मेरे जीवन के एंड तक ये लिस्ट रहने वाली है। मतलब एंड तक मैं कैसे रहने वाला हूँ? ऐसे रहने वाला हूँ। मतलब मैं एंड तक भी, एंड वट एवर वी कॉल, कि जब तक मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटेंटेड, एंड देन आई एम गोइंग टू से, एंड देन अब ही विल गेट अ कार, ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट मैरिड, बट डेफिनेटली ही वॉन्ट फील कि हिज वाइफ इज द अच्छी वाइफ, because no one is going to fit into that perfect
0: image. आज वैसे फिट कर भी जाएगी तो कल तो होगा ही होगा,
1: you know, तो वो discontentment हमेशा बनी रहेगी। लाइफ स्किल्स मतलब मैं अपने अंदर कौन सी स्किल्स क्रिएट करूं जिससे चाहे वो जॉब है चाहे वो कोई रिश्ता है उसमें मैं कैसे अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को कंटेंटेड और अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट करूं।
2: दिस इज इंपॉर्टेंट। चाहत बुरी नहीं है, परंतु हम क्या चाहते हैं वहाँ गड़बड़ वहीं पर है, क्योंकि हम बाहर की चीजें चाहते हैं और उसका कहीं अंत नहीं है, वहाँ फुलफिलमेंट होनी ही नहीं है। इसीलिए मैंने आउटर एनर्जी कहा। अगर अंदर की चाहत हो कि मुझे शांति चाहिए, मैं एक बार बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है। लोग ये सोचते हैं कि मुझे यह सब मिल जाएगा फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, परंतु सत्य बिल्कुल इससे विपरीत है। पहले आप जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ और फिर आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा। और यही स्किल्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भी कैसे स्किल्स

0: पत्नी चाहिए, लेट्स से मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, ओके, लेट्स सो दैट वो व्यक्ति पर नहीं आप जिम्मेवारी रख रहे हो, आप ये कर रहे हो कि मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, और ये अच्छा रिश्ता क्रिएट भी कौन करेगा? आई विल क्रिएट दैट, सो दैट आई एम नॉट के मुझे कुछ नहीं करना, यू नीड टू बी द परफेक्ट whoever, a wife, a child, a friend for me, then I'll never be happy. Because then I'm giving, like he said, the control totally to you. But if I say, mujhe ek achha rishta chahiye, and I am going to work on creating this good relationship, then the control comes back totally into my hand.
1: That's what the problem is, that I've been doing it all my life, and ab main itna thak chuka hun, tabhi to main, see, chahat mein mere ko hi kaam karna hai, to phir chahat kya?
0: आपको कुछ भी चाहिए हो, बिना काम करे मिलेगा क्या? कुछ भी आप क्या बिना पढ़े बोलेंगे क्या मुझे पास होना चाहिए?
1: कितने लोगों का ये ड्रीम होता है, लेकिन
0: पास तो नहीं होंगे ना. कुछ भी चाहिए तो वो ऐसे नहीं आ रहा ना. कुछ भी चाहिए मीन्स आई विल वर्क टूवर्ड्स इट एंड आई विल गेट दैट, बट आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए. पास होना चाहिए स्टडी. ऐसा होगा नहीं कि आप एफर्ट डालेंगे, स्टडी करेंगे और आप पास नहीं होंगे, तो ऐसा होगा नहीं ना. तो हर एग्जाम में आपको अगर करना है, पास होना है, तो बिना हमारे एफर्ट किए नहीं होगा. आपने कहा हम जीवन भर ये करते आए हैं, एक्चुअली नॉट. जीवन भर हम सिर्फ वेट करते आए हैं कि दूसरे वो करेंगे जो मुझे चाहिए. सो देन हमने सिर्फ वेट किया एक्चुअली,
2: और हमने अपनी लाइफ मिजरेबल बनाई.
1: लेकिन एक जो अभी आपने बात कही कि आई थिंक इट्स समथिंग विच नीड्स टू वर्क ऑन, कि एक्चुअली अगर मैं ड्रीम की बात करूं, चाहत की बात करूं, तो मैं बिना कुछ किए ही चाहती हूं कि वो हो जाए. ये तो एक है, लेकिन कई बार मैं उसको उसकी प्राप्ति के लिए कर्म भी करती हूँ. करते हैं हम कर्म और वो नहीं सफल होता. मतलब जैसे पास होने की बात है, या अच्छी नौकरी की बात है, या फिर प्रोफेशनली बहुत ग्रो करने की बात है, जो चाहत है, जो ड्रीम है कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, और उसके लिए मैं मेहनत भी करता जाता हूँ, बट वन आई एम नॉट एबल टू रीच, एंड बाय द टाइम आई रीच आई एम सो टायर्ड दैट इट डजंट मैटर.
0: That's because maybe the journey had too many obstacles and too many hurdles, and I was not driving right. You know, आप एक जगह से दूसरी जगह drive पे तो जा रहे, लेकिन आपने कैसे drive किया उस journey पर? End में जब आप अपने destination पर पहुँचते हैं, you might be totally just exhausted, क्योंकि you drove the wrong way, आपने किसी को टक्कर मारी, यहाँ किया, बार बार brake बहुत जोर से लगाई, बहुत ज़्यादा honking की, how are you going to feel at the end of the journey? तो वो ही आज हो रहा है. आपको professional success चाहिए, it's a journey, आप उस पर work कर रहे हैं, लेकिन हर रोज़ office जाकर आप लोगों पर चिल्ला रहे हैं, हर रोज़ आप चिंता कर रहे हैं, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, हर रोज आप सोच रहे हैं मेरे से पहले कोई और उस पोजीशन पर नहीं पहुंच जाए. तो जो गिरीश भाई ने कहा, इंटरनल जो एनर्जी आप सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी? तो फिर जब आपको वो पोजीशन, वो टाइटल मिल भी जाएगा, यू आर क्वाइट ड्रेन्ड आउट बाय द टाइम यू आर रीच्ड देयर. एंड फिर आपको वो टाइटल मिल गया, विद इन अ वीक यू आर ऑलरेडी एमिंग फॉर योर नेक्स्ट टाइटल, एंड फिर अगेन अ न्यू जर्नी, अगेन वो जर्नी ऐसी ही होगी. तो फिर आपको वो एक हफ्ता नहीं याद रहता जब आपको अच्छा लगा वो टाइटल मिलकर, आपको वो पूरी जर्नी जो एग्जॉस्ट कर देता है.
1: टाइटल तक पहुंचने से पहले पहले मेरा नेक्स्ट की इच्छा हो चुकी
0: है. वो तो हो जाता
2: ना. व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि हम आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं,
0: बाहर का हां एक्चुअली चाहिए कि लिस्ट में पहले तो बहुत क्लियर हो जाए कि क्या चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर चाहिए की लिस्ट है, ये चाहिए तो क्यों चाहिए? लेट्स कीप कमिंग डाउन डाउन डाउन. ये चाहिए क्यों चाहिए? आपको पोजिशन चाहिए तो क्यों चाहिए? बिकॉज लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो मान शान मिलेगा. अच्छा, वो भी क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो मिलेगा देन आई विल फील गुड. इट हैज टू कम डाउन टू आई विल फील गुड. आप चाहे कोई भी बात ले लो, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल सक्सेस है, या चाहे वो गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी है,
1: इट मेक्स मी फील गुड.
0: तो चाहिए लिस्ट में एक्चुअली तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, एंड दैट इज फीलिंग गुड. एंड नाउ वी वॉन्ट टू ट्राई कि पहले हम फीलिंग गुड क्रिएट कर लें, देन वी विल एम एंड बाकी सारी चीजें जो चाहिए.
2: और भी नहीं, और एक देखो बात की भी साइकोलॉजी में माना गया है कि भी हार्डवर्क नहीं जरूरी है, स्मार्ट वर्क इज नेसेसरी. ये भी कहते हैं
1: स्मार्ट वर्क,
2: दैट इज व्हाट नो इज अ स्किल. लाइफ स्किल इज स्मार्ट वर्क. और भी ये मानते हैं हार्ड वर्क ही नहीं, टीम वर्क जरूरी
1: है। एक और आपसे एश्योरेंस चाहिए कि अभी शिवानी ने कहा कि इफ आई फील गुड राइट नाउ वट एवर वेर एवर इफ आई लर्न टू फील गुड विल आई गेट एवरीथिंग आई एम एमिंग।
2: डेफिनेटली प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस बहुत डीप की बात।

0: हैं, चाहे तो अभी आपको बता दूं, इट्स वेरी डीप थिंग, मे बी आगे हम डिस्कस कर पाएंगे इस बात को,
1: या वी
0: ऐसा
1: लर्न
0: माना
1: द
0: भी। हाँ हाँ
1: प्रोसेस.
0: नहीं, इसमें पूरा एक आध्यात्मिकता में माना गया है, लोग ये समझते बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, कहते आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, सिर्फ आवश्यकता है कि भी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर अगर हम उस चीज को क्रिएट कर पाए अपनी साइकी में, तो आउटर वर्ल्ड में भी वो क्रिएट होता है, जिसको कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि बस अपने थॉट प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर दो तो उसी प्रकार के वाइब्रेशन सारे कॉस्मोस में भी क्रिएट करोगे, जिसको सिंक्रोनिसिटी कहते, और वह चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे भी रिश्ते की बात कही ना, भी बस आपके मन में रियल कि मुझे ऐसा एक अच्छा रिश्ता चाहिए, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनी, इंटरनल स्टेट बनी, अंदर एनर्जी अच्छी बनी, तो ऑटोमेटिक ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे हु विल बी राइट पर्सन, है जिसके साथ आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, सदा के लिए सुखी रहेंगे। तो सिंक्रोनिसिटी को यूज करना है, सिर्फ ना टेंशन से भागा दौड़ी करो ये प्राप्त करना इसे करना, उसे तो एंग्जाइटी हो रही है,
1: और वो डर
0: हाई ब्लड प्रेशर
1: कि
0: हो रहा
1: मिलेगा
0: है।
1: कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, मिल गया तब भी चला जाएगा, ये जो सारे एफर्ट्स, ये जो पूरी एनर्जी इसमें जा रही है. तो डॉक्टर पटेल, आपने कहा स्मार्ट वर्क, हम हार्ड वर्क करते आ रहे हैं जीवन में, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे?
0: नहीं, वही आर्ट सीखने की जरूरत है। जैसे भी स्मार्ट वर्क के कुछ भी चीजें हम देखें, तो एक तो हमें अपने विचारों को मैनेज करना सीखना होगा। हम औरों को मैनेज करने का सोचते हैं, परंतु तो अपने विचारों को मैनेज करने का नहीं सोचते। और एक स्मार्ट वर्क बहुत ही जरूरी है कि औरों को परिवर्तन नहीं करना है, मुझे परिवर्तन करना है। कहते कि भाई अमेरिका में एक लड़के का पॉलिटिकल फैमिली में जन्म हुआ, वह करीब 25 साल का हुआ, तो उसने सोचा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारी दुनिया को बदल दूंगा। 45 ईयर्स का हुआ, सोचा कि भाई शायद सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकता हूँ, जरूर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारे अमेरिका को बदल दूंगा। 55 का हुआ, सोचा शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मेरे स्टेट का गवर्नर जरूर बनूंगा, सारे स्टेट को बदल दूंगा। 75 का हुआ, सोचा शायद स्टेट को बदलना भी मुश्किल, कम से कम अपने गांव को तो जरूर बदल दूंगा। 85 का हुआ, मरने को था, सोचने लगा अरे रे अपने आप को ही नहीं बदला, अपने आप को बदल देता तो बहुत अच्छा होता। दिस इज व्हाट इज नेसेसरी, कि ये फाउंडेशन वहां है, अपने आप को बदलो सारी दुनिया को बदल दोगे।
2: इज इट पॉसिबल? दैट इज व्हाट वी सेड, फील गुड, जो आपने कहा गारंटीड कि वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भाई साहब ने कहा पक्का मिलेंगी, लेकिन 0.1% चांस अगर नहीं मिले, यू आर स्टिल फीलिंग गुड, दैट्स व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये गारंटी है कि फीलिंग गुड ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है। सी, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हाथ में हैं, और कुछ एक बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं पहले अपनी सारी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस कर दूँ जो मेरे कंट्रोल में है। सी, इट्स अगेन लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, सिर्फ मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, इट्स नॉट अ गारंटी कि बाकी लोग ठीक ड्राइव करेंगे, इवन अगर मैं उनको खड़े होकर ड्राइविंग की सारी स्किल्स वहाँ पर अच्छी तरह से बताऊँ। सेम थिंग इज हैपनिंग, हम आसपास के अपने लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यू नो स्पाउस है, चाहे वो कलीग है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो वही करेंगे जो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि दे आर चूजिंग हाउ दे वॉन्ट टू ड्राइव। नाउ आई हैव टू चूज हाउ आई वॉन्ट टू ड्राइव, एंड वो गारंटी है कि अगर मैं अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से फोकस करूँ, मैं रीच करूँगी अपनी डेस्टिनेशन विदाउट अ सिंगल एक्सीडेंट। दैट इज डेफिनेट, इवन इफ एवरीवन अराउंड मी इज ड्राइविंग बैडली, इट्स स्टिल पॉसिबल। लेकिन उसके लिए चाहिए होती है 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे। लेकिन अगर सब लोग आसपास गलत चला रहे हैं और मैंने 2 मिनट भी थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया कि वो कैसे चला रहा है, आई बैंग इनटू समवन, तो वो फुल फोकस
1: कोई और आएगा।
2: यस, फुल फोकस अगर आपको अपनी एनर्जी पे हो गया, तो फिर आप पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे विदाउट अ सिंगल स्क्रैच हेयर। That's possible, and that's the purpose of life, to feel good and to feel happy.
1: Dr. Patel, एक अच्छी assurance मिल रही है हमें कि पूरी श्रृंखला में हम ये तो जानना चाहेंगे और ये सीखेंगे कि feel good कैसे करना है, but और क्या कुछ शामिल होगा आने वाली कड़ियों में?
0: और तो मैं समझता हूँ feel good के लिए जरूरी है कि विचारों को बदलना, क्योंकि हमारे विचार ही सब कुछ करते हैं। कहेंगे कि जो बहुत बड़ी कला है वह है thought management, वी कैन कॉल इट इवन माइंड मैनेजमेंट। और माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी चाहिए सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस. तो सेल्फ एस्टीम को हम कैसे डेवलप करें, और भी कुछ सचमुच ऐसी लाइफ स्किल्स की भी जिसे डेवलप करें, रिलेशनशिप की स्किल्स है, या तो अपने आप को चेंज करने की स्किल्स है, अंदर में भरपूरता को कैसे प्राप्त करें वह, और यह सब हो सकता है आध्यात्मिकता से. आज मूल चीज है, आज लोग धर्म की ओर तो मुड़े हैं परंतु आध्यात्मिकता का सत्य अर्थ नहीं समझे. तो आध्यात्मिकता को हम और डीपली समझेंगे, मेडिटेशन के साइंटिफिक बातें क्या उसको भी समझे, ताकि 21वीं सदी में भी लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे.
2: आज हम में से मेजोरिटी कोई ना कोई डिजीज के शिकार है, और कुछ नहीं तो दर्द यहाँ वहाँ तो लगा ही हुआ है, किसी के बैक एक है, किसी के नी पेन है. कैसे हम इस पेन को मैनेज करें विद द पावर ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत सारे हम स्कैन्स कराते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, तो डॉक्टर कहता है थिंक अबाउट इट, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज मैंने यहाँ कभी देखा नहीं. तो देन आई लर्न टू लिव विद द पेन. Now we want to heal that pain. तो माइंड का बॉडी पे असर, फूड का माइंड पे असर, बॉडी पे असर, रिलेशनशिप्स पे असर, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे. एंड एक बहुत बड़ी चीज़ जो आजकल हो रही है, फियर, जिसकी वजह से हम बहुत सारी और चीज़ों पर कंट्रोल दे रहे हैं, whether it is astrology, whether it is all kinds of sciences outside. तो कई बार हम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हर रोज़ उनसे पूछ रहे हैं हम ऐसा करें या नहीं करें, हम आज का दिन ठीक है या आज का दिन ये ऐसा है, ये टाइम ठीक है या ये टाइम गलत है. तो पूरी गाड़ी का कंट्रोल किसको दे दिया है, जस्ट टू समवन एल्स. तो भले ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में रहते हुए भी मुझे फिर भी कैसे चार्ज लेना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो तंत्र है, इन सब इन्फ्लुएंसेस में रहते हुए हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टिल बी द मास्टर ऑफ माय लाइफ, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू.
1: सो लाइफ स्किल्स के इस पूरी श्रृंखला में आपके साथ रहेंगे. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. डॉक्टर पटेल, ओम शांति. तुझे क्या चाहिए जिंदगी, बहुत बार अपने आप से कहते हैं, और आज तो हम इस मुकाम पर हैं, इस मोड़ पर हैं कि सचमुच लगने लगा है कि जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज है, थके से हुए हैं, लेकिन इस थकान को दूर करना है. हम में से हर कोई अच्छा फील करना चाहता है. फील गुड फैक्टर बहुत बार सुना, लेकिन आज से शुरू होती है ये जर्नी. हम जानेंगे कि कैसे अच्छा महसूस करते करते जीवन के हर सुख की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे अभी तक जो पूरी डिपेंडेंसीज बाहर थी, धीरे धीरे एक एक करके ये चार्ज अपने हाथ में लेंगे प्रैक्टिकली. कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप इस श्रृंखला में जिसे चाहते हैं कि हम लेकर आए, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 9873446, 9873666, हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे भी बहुत से स्किल्स जानेंगे जिंदगी के बारे में, जिंदगी से जुड़ी हुई. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

अनंत के दर्शन कराएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शिष्य को वह अनंत सत्य दिख जाता है, तब शिष्य का अपना अस्तित्व कहाँ जाता है? क्या वह गुरु से अलग बना रहता है या कहीं खो जाता है? आज का दोहा मिलन की उस पराकाष्ठा का है, जहाँ दो मिट जाते हैं और केवल एक शेष रहता है। श्रोताओं, कबीर आज जिस मिलन की बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण मेल नहीं है। यह आत्मा का परमात्मा में, या यूं कहे कि शिष्य का गुरु के ज्ञान में विलन हो जाना है। कबीर ने इसके लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण दिया है, पानी और नमक का। उनका दोहा है, कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लून, जाति पाति कुल सब गया, नाव धरोगे कौन।

कबीर इस दोहे से समझा रहे हैं कि इसका मर्म अद्वैत की उस स्थिति में छिपा है जहां पहुंचकर द्वैत यानी दो का भाव मिट जाता है। कबीर कहते हैं कि मुझे ऐसा गर्वा यानी गौरवशाली आत्मज्ञानी और तत्वज्ञान से पूर्ण गुरु मिल गए जिनकी कृपा ने मेरे अस्तित्व को ही बदल दिया। उनके ज्ञान के स्पर्श से मैं शुद्ध चैतन्य में एक इस कदर लीन हो गया कि अब मुझ में और उस विराट सत्य में कोई भेद नहीं बचा। यहाँ कबीर एक बहुत ही सरल लेकिन अद्भुत उदाहरण देते हैं, रली गया आटे लून, जैसे आटे में नमक मिलकर एक हो जाता है और उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही कबीर का अपना स्व अर्थात अहंकार और अस्तित्व गुरु के ज्ञान में विलीन हो गया। यहां साधक गुरु और ईश्वर ये तीनों एक हो गए हैं। जब नमक पानी या आटे में घुलता है तो वह अपनी पहचान खोकर उस पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसी तरह जब शिष्य को तत्वज्ञान प्राप्त होता है तो उसकी जाति पाति कुल और यहाँ तक कि उसका नाम भी अर्थहीन हो जाता है। कबीर पूछते हैं, जब मैं बचा ही नहीं तो अब तुम मेरा क्या नाम रखोगे? अब तो मैं वही हूँ जो मेरे गुरु हैं, जो यह ईश्वर हैं। यह साधारणीकरण की जो अवस्था है जहाँ व्यक्ति विशेष नहीं रहता, वह विश्व का हो जाता है। अब वह न हिंदू है न मुसलमान, न ऊंचा है न नीचा, वह तो बस उस ज्ञान का हिस्सा है। दोस्तों, हम अपनी पहचान को लेकर कितने सजग रहते हैं, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा खानदान। लेकिन कबीर सिखाते हैं कि असली शांति तब मिलती है जब हम अपनी इन छोटी पहचानों को किसी महान उद्देश्य या महान गुरु के ज्ञान में विलीन कर देते हैं। तो विचार कीजिए, क्या आप नमक की तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं या पानी में घुलकर अमृत हो जाना चाहते हैं? तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए।

भाग 80 बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का चौथा मार्ग तूने दिखाया। सम्यक कर्मात्, सम्यक कर्मात् यानी योग्य वर्तन, योग्य वर्तन सिखाता है सम्यक कर्मात्। दूसरों के हक की इज्जत करना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, अन्य लोगों का मान सम्मान रखना, यह कृति सम्यक कर्मात् है। जीवन के बुनियादी नियमों के साथ सुसंगत वर्तन करना सम्यक कर्मात् है। जब कभी किसी का वर्तन सामाजिक नियमों से बद्ध हो तब समझना उनका वर्तन सम्यक कर्मात् है। नियम विरोधी क्रिया या नियम बाह्य वर्तन सम्यक कर्मात् में त्याज्य माना जाता है। हिंसा न करना, व्यभिचार, काम वासना का स्वेर होना तथा नहीं करना चोरी, बोलना नहीं झूठ, करना नहीं नशा, सम्यक कर्मात् का अनुपालन करते समय मनुष्य को रहना होता है सदा सतर्क। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का पांचवा मार्ग तूने दिखा दिया। सम्यक आजीविका का, आजीविका का संबंध चरितार्थ से है। होते हैं अनेक मार्ग चरितार्थ चलाने के, कुछ होते हैं बुरे, कुछ होते हैं अच्छे। जिस मार्ग के कारण अन्याय होता हो दूसरों पर, वह मार्ग बुरा समझना। सम्यक आजीविका में स्वार्थ की खातिर दूसरों को पीड़ा पहुंचाना नहीं और बिना अन्याय किए खुद की जीविका चलाने तक कमाने का मार्ग, जिसे सम्यक आजीविका से संबोधित किया गया है, यह मार्ग समाज मान्य मार्ग है, जिससे त्याग की भावना का संस्कार परिपोषित होता है, परोपकार की भावना बढ़ जाती है, विकसित होता है संस्कृति का सूत्र। कहते हैं जो खुद खाए खुद की रोटी उसे कहते हैं प्रकृति, जो छीन लेता है रोटी दूसरों की वह है विकृति, और जो अपने हिस्से की रोटी दूसरों को देता है वह है संस्कृति। सम्यक आजीविका का स्वरूप संस्कृति में है विद्यमान। बा तथागता आर्य अष्टांगिक मार्ग का छठा मार्ग तूने दिखाया। सम्यक व्यायाम अविद्या नष्ट करने का पहला टप्पा होता है साध्य व्यायाम से। सम्यक व्यायाम नकारता है अंधश्रद्धा, कर्मकांड और काल्पनिक ग्रंथों को, प्रमाण विहीन विचारों को, अविद्या यानी दुख। इस दुख के कारागृह से अविद्या नष्ट हुई तो बाहर के विवेकी दरवाजे तक स्वातंत्र की अनुभूति पहुंचाई जा सकती है खुलेपन के साथ, उसके लिए उपयोगी है सम्यक व्यायाम। प्रतिरोध करता है सम्यक व्यायाम अकुशल चित्तवृत्ति का, जो विरोध करती है आर्य अष्टांगिक मार्ग का। पोषक कार्य करता है सम्यक व्यायाम कुशल चित्तवृत्ति निर्माण करने में, जो लाभदायक और सहायक होती है आर्य अष्टांगिक मार्ग को। आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम का लाभ चित्तवृत्ति विकास एवं वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक।

नमस्कार, ओम शांती। चलांकल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलती जे अर्णव पियुषांचे। चिंतामणीचे गाव, कल्पतरूचे आरव और बोलती जे अर्णव पियुषांचे। पियुष अमृत, अमृत जैसे बोल, इसके ऊपर हमारा चिंतन शुरू था पिछले एपिसोड में। अमृत क्या है, इसके बारे में हमने कुछ थोड़ी सी चर्चा की। बोलती जे अर्णव, बोलना, बोलना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान को जबान तो भगवान ने सबको दे दी है। जानवरों को भी जबान है, इंसान को भी जबान है, लेकिन जबान चलाना इंसान जानता है, जानवर नहीं जानता। जानवर तो सिर्फ खाना खाने के लिए जबान का इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान जबान का इस्तेमाल करना सीख गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जबान फिसल जाती है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भूल जाता है। बोलना किसको है, बोलना कब है, बोलना कैसे है, बोलना क्यों है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बोलती जे अर्णव पीयूषान से, जो बोल है संतों के, जो अच्छे लोगों के बोल है, वो अमृत जैसे है। क्योंकि ये जो बोल है ना, वो जबान बोलती है, जबान के जरिए बोल जाते हैं, और इसलिए अगर जबान ठीक चले तो ये अमृत हो जाता है, नहीं तो जहर हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, जहरीले बोल। हमारे यह जो कहावतें है ना, वो बहुत अच्छी है। जो पुरखों ने हमारे कहावतें बनाई होगी तो बहुत ही उसके ऊपर विचार किया होगा। हम हमेशा कहते हैं सोच समझ के बोलो। क्या कहते हैं? सोच समझ के बोलो। इसका मतलब ये है कि पहले सोचो, फिर समझो और फिर बोलो। हम क्या करते हैं, बहुत बार आप सोचते होंगे, आप समझते होंगे, आप मुझसे सहमत भी होंगे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पहले बोल लेते हैं, पहले बोल लेते हैं और फिर समझ में आता है कि हमने क्या बोला। समझते हैं, बोलने के बाद फिर समझते हैं हमने क्या बोला, किसको बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, और फिर ये सब जब महसूस होता है, ये सब समझ में आता है, तब फिर इसके ऊपर सोचते रहते हैं कि हमने ऐसे क्यों बोला, होता है। और यही तो गड़बड़ है। ये जबान जो है, एक जबान जो है गलत इस्तेमाल हो गई तो उसके ऊपर महाभारत हो गया। कहानी है कि एक द्रौपदी भरी सभा में, मय सभा में जब दुर्योधन गिर गया, उसको पता नहीं चला पानी कहाँ है और जमीन कहाँ है, क्योंकि मायावी नगरी थी। और जब दुर्योधन गिर गया तब द्रौपदी हंसी और फंसी, एक बार हंसी और फिर फंसी, क्योंकि हंसने के बाद जहरीले शब्द निकल गए मुंह से। अंधे की औलाद अंधी, बस ये दो तीन शब्द जो है वो सुनने के बाद महाभारत हो गया, ऐसे सबका मानना है। तो क्या हो गया, जबान का गलत इस्तेमाल हो गया, सही इस्तेमाल नहीं हो गया, पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, बोल दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वही करना पड़ेगा कि पहले सोचना है, समझना है और फिर बोलना है। अगर ये नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोलती जे अर्णव पीयूषान से, बोल जो है, माउली जो है ना,
हर शब्द का इस्तेमाल जो है वो बड़े प्रेम से, बड़े सोच समझ के करती है, और इसलिए उसके ऊपर चिंतन करने में बड़ा मजा आता है। एक एक शब्द जो है इसका प्रयोग जो किया है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से अमृत। अमृत कब होगा? जब जबान ठीक चलेगी। और यह जबान भी देखो कैसी है। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो जबान को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप सहमत है मुझसे? देखिए, जबान को चाट चाट अच्छा लगता है, चाट मसाला, पानीपुरी, भेलपुरी, सेव बटाटा पुरी, मिसल, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। और फिर स्प्राउट्स, कम शुगर वाला, कम नमकीन, ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी है लेकिन जबान के लिए ठीक नहीं है। हम भगवान का नाम लेते समय कितना समय लगता है ये काउंट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अगर गप्पे लड़ाने हैं, बातें करने हैं, तो घंटों कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। बोलती जे आर्णव पीयूषान से, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, जब मन में वो है, भगवान की स्मृति, परमात्मा की स्मृति मन में है, तो बोल अपने आप मीठे हो जाएंगे। और अगर स्मृति नहीं है तो भरोसा नहीं है कब कड़वे हो जाएंगे, क्योंकि यह जबान जो है, लेकिन उससे जबान बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी भी है, उसके पास कुछ गुण भी है, क्योंकि ये गुण ऐसा है कि वो है बहुत नरम, सॉफ्ट, भले उसके शब्द जो है उससे घाव होते होंगे, कहते हैं ना तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन जबान के घाव भरते नहीं है, तो शब्दों से वार हो जाता है, शब्दों से घाव हो जाते होंगे, लेकिन जबान बहुत सॉफ्ट है। कहां रहती है? 32 दांत है उसके बीच में रहती है, लेकिन खुद को बचाती रहती है, उसको मालूम है बच के कैसे रहना है, 32 दांतों के बीच में भी कैसे बच के रहना है यह जबान को मालूम है, लेकिन मदद भी करती है। जब खाना खाते हैं, अगर जबान ही नहीं चली तो खाना खा नहीं सकते, इसलिए जबान मीठी है तो अच्छी है, कड़वी है तो गड़बड़ है। तो अगर उसे मीठी करनी है कौन करेगा? हम करेंगे जब हम सोचेंगे, समझेंगे और बोलेंगे। इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, ऐसे लोग होंगे जो कल्पतरुं के बगीचे होंगे, ईश्वर निष्ठ होंगे, मांदियाड़ी, बगीचा, आरव और चिंतामणिन से गाव, और ऐसे सब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनसे मुंह से जो बोल निकलेंगे, उनके मुंह से जो बोल निकलेंगे वो मीठे ही होंगे और अमृत जैसे होंगे, और वो भी अमृत एक प्याला नहीं है, आर्णव समुद्र जैसा महान, ऐसा आर्णव होंगे। और इसलिए माउली कहती है, बोलती जे आर्णव पीयूषान से, क्या कमाल है, हमारे सामने चित्र खड़ा हो गया है। और फिर माउली कहती है, चंद्रमेजे अलांचना, मारतंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो। तो चांद कैसा है? चांद बहुत खूबसूरत है, ईद का चांद, चौदहवीं का चांद, क्या चांद है। अगर बहुत कोई सुंदर है तो बोलती है चंद्रा जैसा, चांद जैसा। एक लाजरा साजरा मुखड़ा, चंद्रवाणी फूल लाग, चंद्र, वो जब कोई सुंदर स्त्री है उसका वर्णन करता कवि है तो वो चांद जैसा कहता है। और छोटा बच्चा है
तो भी चंदा प्यारा है, क्योंकि उसको मामा कहते हैं, माँ का भाई चंदा मामा। और फिर चांद, ईद का हमारे मुस्लिम बांधव जो है वो भी ईद का चांद, चांद महत्वपूर्ण है। और हमारी माताएं जो है वो पूजा करती है करवा चौथ, फिर भी चांद। और गणेश जी के जो भक्त है वो संकष्टि चतुर्थी करते हैं, वो भी चांद। ऐसा चांद है, इतना पवित्र है, इतना अच्छा है, लेकिन गणेश चतुर्थी पे चांद नहीं देखना है, दाग लग गया। चंद्रमेजे अलांछना, लांछन चांद के ऊपर लांछन है, लेकिन माउली कहती है ऐसे संत है, ऐसे फरिश्ते है, ऐसे महान आत्माएं है, वो चांद जैसे है लेकिन अलांछित है, लांछन कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा विस्तार से इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम।

नमस्कार, ओम शांति। चंद्रमेदे अलांचन मारतंडदे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो। किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होवो नितिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित। यहां पसायदान ऑफिशियली मीन्स जो मांगना है वो पूरा हो जाता है। तो क्या कहा, चंद्र मेदे अलांचन। पिछले एपिसोड में हमने चंद्रमा चांद उसमें अलांचन लांचन इसके ऊपर चर्चा की। चंद्रमा की और एक खासियत है जो मुझे याद आई कि पूनम का चांद होता है, पुनवे का चांद, पुनो का चांद, तब कहते हैं कि हाई टाइड आती है, भरती आती है समुन्दर को, सागर को भरती आ जाती है जब समुन्दर वो देखता है पूरा है और समुन्दर को अट्रैक्शन होता है, ऐसे मानते हैं पुनवे का चांद, पूनम का चांद, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण है। आत्मा की संपूर्णता जो है वो पूनम का चांद है, इसलिए पूरा का पूरा है, नहीं तो फिर धीरे धीरे धीरे कम होते जाता है, अमावस में पूरा ब्लैकआउट और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करते हुए वो बढ़ते जाता है, इसलिए कला कहते हैं उसका, सेलेस्टेल्स। तो ये आत्मा की भी ऐसी कला है और जब आत्मा की संपूर्णता आ जाती है, पूर्ण स्वरूप, तब सागर को भरती आ जाती है। सागर कौन? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, परमात्मा। तो खुदा मेहरबान हो जाता है जब आत्मा संपूर्ण स्टेज पे आ जाती है। और ये आत्मा की संपूर्ण स्टेज जिसको हम फरिश्ते कहते हैं उनका ही वर्णन माउली ने किया है। जे खड़ांजी व्यंकटी सांडो से शुरुआत है और चंद्र में जे अलांचन मारतंड जे तापहीन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो दो। तो चंद्रमा देखा हमने, अभी माउली मारतंड का भी उपमा देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जो है वो मारतंड, मारतंड का मतलब है सूरज, और अपनी सोलर सिस्टम में ग्रह तारे जितने हैं उसमें से सूरज जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और वो स्वयं प्रकाशित है। सूरज को किसी की रोशनी देने की जरूरत नहीं है, खुद रोशनी पैदा करता है, स्वयं प्रकाशित है और इसलिए परमात्मा को भी स्वयं प्रकाशित कहते हैं। आपने जो मराठी जानते हैं वो तो बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्होंने भी ये अभंग या गाना सुना होगा, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांचा नाथा तुझ नमो, एकनाथ महाराज का है। उसमें वर्णन किया है सद्गुरु माझा आनंद सागर। सद्गुरु कैसा है? वो आनंद का सागर है। त्रैलोक का आधार गुरु राव, त्रैलोक या तीनी लोकों का आधार जो है वो गुरु राव हमारा सद्गुरु है। तो ये देहधारी हो सकता है सद्गुरु कोई? क्योंकि सद्गुरु जो है, जितने देहधारी सद्गुरु है वो तो बिल्कुल ही 100% अच्छे है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी हर एक की मानना अलग अलग है। देवताओं को भी कोई ये देवता को मानता है, कोई ये देवता को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई हनुमान को मानता है देवता, क्योंकि इष्ट देव कहते हैं। इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा जो है, इसलिए ना एकनाथ महाराज इन्होंने कह दिया सद्गुरु माझा आनंद सागर त्रैलोक के आधार गुरु राव, गुरु राव स्वामी असे स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाशित। कहां से आया हम? स्वयं प्रकाशित। जो स्वयं प्रकाशित है वो परमात्मा है
और इसलिए उसको सूरज की उपमा दी जाती है, क्योंकि सूरज भी स्वयं प्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है, और इसलिए स्वयं भू भी कहते हैं, परमात्मा को स्वयं भू कहती है। बाकी सबको किसी ने बनाया है, सब देवताओं को किसी ना किसी ने बनाया है, लेकिन एक परमात्मा जो है, जो शिव का लिंग, जो शिवलिंग जे रूप में पूजा पूजन करते हैं, जिसे हम स्वयं भू कहते हैं, और उसका ही शॉर्ट फॉर्म शंभू, शंभू महादेव। तो ये सूरज कहां से आई बात, सूरज मारतंड जे ताप ही न, तो ये नव ग्रहों का, ग्रह और ताराओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसा सूरज भगवान जैसे मानते हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है, वो तापदाई है। आपने अनुभव किया होगा, अभी समर सीजन शुरू है, बारिश आ गई है, लेकिन समर सीजन तो अभी अभी पूरा हो रहा है, और आपने अनुभव किया होगा कि समर में दोपहर को बाहर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। मारतंड से ताप ही न, तो ये कभी कभी सूरज तापदायी हो जाता है, लेकिन माउली कहते हैं ये संत सज्जन जो है वो मारतंड तो है, लेकिन ताप ही न है। और फिर ये तापहीन है, और ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो ऐसे मारतंड तापहीन है, लेकिन वो सदा सज्जन है, कभी सज्जन कभी दुर्जन नहीं है, कभी सुर कभी असुर नहीं है। हमारे मन में सुर भी है असुर भी है, लेकिन सुर कब पैदा होता है और कब बेसुरा हो जाता है पता नहीं चलता। इसलिए हमारी जिंदगी कभी सुरीली हो जाती है और कभी सुर ही नहीं लगता, कहा सही सुर है, कई ताल है, तो बेताल हो जाता है, बेसुरा और बेताल। और जब परमात्मा से मिलन होता है, परमात्मा की याद आती है, उसके सुर में सुर मिला लेते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मेरा कौन, मैं, और तुम्हारा भगवान, उसके सुर में अगर सुर मिलाते हैं तो जिंदगी सुरीली हो जाती है। तो सज्जन ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो सदा सज्जन, ये संत जो है, ये फरिश्ते जो है, वो सदा सज्जन है, इसलिए माउली ने उनको उपमा दी है सदा सज्जन। जैसे शिव को भी सदा शिव कहते हैं, शिव मीन्स कल्याणकारी, और सदा शिव मीन्स सदा कल्याणकारी, कभी कल्याणकारी कभी अकल्याणकारी नहीं है। भगवान कभी श्राप नहीं देता, भगवान हमेशा हमें अच्छा ही देता है, आशीर्वाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, शुभ कामना देता है, हमें लेने की ताकत चाहिए। और ये देने के लिए, वो जानने के लिए, और आपको समझाने के लिए फरिश्ते आते हैं। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो तू, सोयरा मराठी में शब्द है, सोयरा मीन्स क्या है, हमारे जन्म से रिश्ता नहीं है, सोयरा मीन्स जन्म से रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में रिश्ता हो जाता है, सोयरिक। शादी ब्याह के मामले में कहते हैं सोयरिक, जिसको हिंदी में हम रिश्ता कहते हैं। अगर किसी के पास आप लड़की मांगने जाओ, बेटी मांगने जाओ, तो बोलते हैं रिश्ता लेके गए, या रिश्ता करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, बेटी वाले जाते हैं तब रिक्वेस्ट करते हैं रिश्ता। इस पहले रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में रिश्ता जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, बेटी के भलाई के लिए जोड़ना है, और वो उस फैमिली में जाती है और उनका भला भी करती है। तो ये रिश्ता जो है जोड़ना, और अगर किसी बड़ी व्यक्ति है, बड़ी हस्ती है, उसके साथ हमारा रिश्ता है, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये फरिश्ते जो है, ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे हो, तो माउली कहती है ऐसे फरिश्ते हैं जो कल्पतरुं के बगीचे हैं, आरव चिंतामणियों के गांव है, चांद से भी शीतल है, और मारतंड सूरज से
तापद सूरज जैसे तापदायक नहीं है लेकिन प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। ऐसे लोग ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे होतु। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ना है तो क्या होगा, ये लोग आते हैं और हमारा रिश्ता भगवान से जोड़ देते हैं। जैसे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो क्या करते हैं, मियाँ बीबी, हिंदी में भी कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। भले हमारे इस्लाम भाई है वो काजी कहते हैं, हमारे हिंदू भाई है वो ब्राह्मण के कहते हैं, या क्रिश्चियन भाई होंगे वो पादरी कहेंगे, है तो भाई रिश्ता जोड़ने के लिए। और ये रिश्ता जो है हमारा फरिश्ता जो है, जिससे फर्श से रिश्ता नहीं है, ऐसे फरिश्ते आते हैं और भगवान से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें मदद करते हैं। अब ये रिश्ता जोड़ने के बाद क्या करना है इसके बारे में चिंतन करेंगे। अभी आखिरी पड़ाव है अगले एपिसोड में, और पसायदान जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरा हो जाता है। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर हम आपके साथ हैं और जिंदगी को एक नई नज़र से देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं, आज कुछ नई बात शुरू करते हैं। अभी तक हम बहुत सी बातें अपने जीवन से जुड़ी जान रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है कि जीवन की हर सिचुएशन हम पर हावी हो जाती है। कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको बदलें, नहीं बदल पाते हैं। धीरे धीरे उसको बदलना भी छोड़ देते हैं और हालात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या यही है ज़िंदगी? कई बार मन करता है कि ये ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कौन से ऐसी कौशल हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हैं लाइफ स्किल्स। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, शुरू यहीं से करते हैं कि क्या हुआ है जिंदगी में कि प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि जिंदगी अच्छी हो जैसी हमने इमेजिन की हुई है, नहीं हो पाती है, और फिर हम कहीं ना कहीं गिव इन करना शुरू कर देते हैं, और फिर देन वी से कि लाइफ मीन्स कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी का मतलब ही है कि एक्सेप्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ऐसे ही जीना है। सचमुच क्या जिंदगी ऐसे ही जीनी है?
2: नहीं, बिल्कुल आपने जो बताया वही बात सिद्ध करती है। आज लोग भी कहते हैं, लोगों से पूछो भी कि भी कैसे हो, तो कहेंगे चल रहा है, या तो बहुत प्रॉब्लम्स है,
0: जी रहे हैं,
2: हाँ, या तो नहीं गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति ने उनके रिस्पॉन्स ही प्रूव करते हैं कि भी लोग इस प्रकार की जिंदगी नहीं चाहते। अब जितने सुसाइड्स को भी आज देखो, भी बच्चों में भी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, वह भी प्रूव करता है कि भी सीरियस प्रॉब्लम है कहीं ना। इट्स नॉट एन स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स नो रियली डीप रूटेड सीरियस प्रॉब्लम कि जिसको लाइफ स्किल्स को समझ करके हमें दूर करना चाहिए।
0: शिवानी, गाड़ी पे आते हैं फिर से आपके साथ लोग गाड़ी को बहुत एसोसिएट करते हैं, क्यों धक्का लगाना पड़ रहा है? क्या पेट्रोल की कमी है? क्या हमने इंजन की ओवरहॉलिंग नहीं की? व्हाट हैज रियली हैपेंड?
1: सबसे पहले तो क्या हमें गाड़ी चलाना आता है? बाकी सब भी तो बाद में करेंगे ना। गाड़ी में पेट्रोल भी तो मैं तब भरूंगी तब मुझे पता हो कि वो पेट्रोल टैंक खोलने वाला जो नॉब है वो कहाँ पर है। हाउ मच डू आई नो अबाउट माय कार? एंड इट्स नॉट अबाउट द कार, इवन इफ यू लुक एट इट्स अबाउट द ड्राइविंग। हाउ मच डू आई नो द स्किल? इवन अगर गाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा ना पता हो, ड्राइविंग की स्किल तो आनी चाहिए ना। दबाना है ब्रेक, दबा दिया एक्सेलरेटर। जो टाइम चाहिए कि हमें एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए, उस टाइम कई बार हम बहुत फास्ट चले जाते हैं। कोई टाइम चाहिए जो हमें फास्ट कुछ करना है, हमें एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो तब दबाना था एक्सेलरेटर, दबा दी ब्रेक, ब्लैंक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता अब क्या करना है जीवन में ना। तो वी से माई लाइफ इज कम टू अ स्टैंड स्टिल, एंड इट नॉर्मली कम्स टू अ स्टैंड स्टिल एट अ पॉइंट वेर इट एक्चुअली नीड्स टू बी गोइंग एट अहेड। सो जस्ट बिकॉज आई डोंट नो when to press the accelerator, when to press the brake. So जैसे हम जीवन की ये बहुत सारी skills सीखते हैं, अपनी गाड़ी कैसे चलानी, अपना computer कैसे चलाना है, even अपना mobile कैसे use करना है, साधन सारे हैं, चलाना ना आता हो तो उसका पूरा use हम नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई हैव अ मोबाइल बट आई डोंट नो कि उसका कैमरा कैसे वर्क करता है या उसका यू नो बाकी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, आई वोंट बी एबल टू यूज़ इट टू इट्स फुल पोटेंशियल। एंड तो मेरे पास चीज़ है लेकिन मैं उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रही जिस तरह से मुझे करना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। सेम विद लाइफ, आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, आई हैव द यू नो पावर टू टेक इट द वे आई वॉन्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है इट जस्ट सीम्स टू बी गोइंग इन एवरीवेयर अदर डायरेक्शन।
0: खिंच जाती है, कभी वो पिक्चर खराब हो जाती है हमसे। क्या हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम सही तरह से उसे सॉल्व करें, वो क्यों नहीं कर पाते? जैसे कहा सर शिवानी आपने कि स्टैंड स्टिल हो जाती है जिंदगी। कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में और हम चाहते हो क्योंकि सिचुएशंस इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, लोग नहीं चेंज कर रहे होते, तो हम नहीं उसको पार कर पाते।
1: आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है, जीवन ऐसी हो जाती है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, लोग नहीं चेंज हो पा रहे, तो इसलिए हम स्टैंड स्टिल हो गए। इसका मतलब मेरी गाड़ी रुक, बाकी सब लोग चला रहे हैं। सी आई जस्ट सेड कि माय सी इवन इफ आई एम स्टक इन द ट्रैफिक जैम, लेट्स से आगे पीछे बहुत सारी गाड़ियां, फिर भी मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि मेरी गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है, मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माय वे इवन थ्रू अ बिग मेस. सिमिलरली अगर कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भी मेरी गाड़ी का कंट्रोल मेरे पास है. आई हैव टू फाइंड माई वे कि मुझे कैसे टर्न करना है, मुझे कहाँ रुकना है, कहाँ फास्ट जाना है. बट हम आजकल ये कह रहे हैं उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा एक्सीडेंट तो होना ही था. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, दिस इज द स्किल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सीरीज. कि येस इट्स अ जर्नी एंड इट्स लाइक अ जर्नी ऑन द रोड, जहाँ सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में, सबकी गाड़ियाँ अलग अलग, सबका तरीका चलाने का अलग अलग. बहुत सारे लोग हमें आसपास मिलेंगे जो थोड़ा सा गलत तरह से भी चला रहे हैं. यू नो नाउडेज वी से कंपटीशन, गलत तरह का कंपटीशन, समटाइम्स वी से ऑफिस पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें हैं, लोग मुझ पर चिल्ला रहे हैं, तो मेरे हाथ में क्या है. इट जस्ट मीन्स कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा ठीक से नहीं चला रहे, बट फिर भी मेरी गाड़ी मेरे हाथ में है. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट कीप ऑन यू नो ब्लेमिंग that other people are not driving well. Always on the road, we will have different kind of people. Koi kisi tarah chalayenge, koi kisi tarah chalayenge. Mera focus apni journey par hona chahiye. Aur uska control mere paas hona chahiye. Jaise hi control bahar de diya, phir to then there is nothing much left to do. So what we want to do in this series is get back the control. To lead my life the way I want to lead it, not the way other people and situations are making me lead it. That is the most important thing.
2: Right. दूसरी एक बात अगर ये भी आप देखेंगे ना, मनोविज्ञान में भी मानने लगे हैं कि आज हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है ना, बाह्य चीजें हमें कंट्रोल कर रही है. वास्तव में हमारा कंट्रोल इंटरनल होना चाहिए. बस ये बात भी अगर अच्छे से हम चर्चा कर रहे, लोग इस बात को समझ ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. और यही कला सीखनी है कि कैसे हमारा जो कंट्रोल है वो हम इंटरनल लाए.
0: नहीं, पहले हमसे जो गलतियां हुई, मैं वही बार बार कर रही हूँ कि उनको एक बार देखें कि क्या हमने रॉन्ग साइड चलाना शुरू किया है.
2: गहराई से हम सोचे दो प्रकार से, आउटवर्डली अगर हम सोचे तो गलती यहाँ पर हुई है कि हम बाह्य बातों पर डिपेंडेंट हो गए. यह समझने लगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे पास बड़ा घर होगा तो मैं सदा के लिए शांत रहूंगा, मेरी पोस्ट पोजीशन बड़ी हो जाएगी, जितना बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाएगा. परंतु ये वो एक बहुत बड़ी गलती कर ली. वह चीजें भल जरूरी है, ये शरीर को कंफर्टेबल बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, परंतु वह सुख नहीं दे सकती, वह हमें सदा के लिए आनंद नहीं दे सकती. बस इसके कारण एक तो हुआ, दूसरी बात कि हम लोगों पर भी डिपेंडेंट हो गए और रिलेशन में डिपेंडेंट हुए, इसके कारण फिर वह सदा के लिए व्यक्ति हमें सुख नहीं दे सकता है, तो और हम दुखी हुए. नहीं, और निराश हुए, इरिटेशन आ गया है ना, हेट्रेट आने लगी, इस प्रकार की सभी नेगेटिव बातें डेवलप हुई. और एक गहराई से अगर बात देखें तो आज हम जो चीज हमें जीवन में चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और जो आउटर एनर्जी है वह हमें अलग अलग दिशा में ले जा रही है.
0: आउटर एनर्जी मींस व्हाट?
2: आउटर एनर्जी ऐसा कहेंगे कि मैं अच्छा दिखूं, है ना, मेरा शरीर अच्छा हो, या तो जैसे मैंने कहा मेरा घर बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी कार दूसरों से बड़ी होनी चाहिए. ये जो सब हम प्राप्त करने के पीछे एनर्जी को लगा रहे हैं वह है आउटर एनर्जी.
0: अच्छा, अपनी ही ऊर्जा,
2: अपनी ऊर्जा,
0: अपनी ही कर्म की ऊर्जा जो है ये इन सब की प्राप्ति में,
2: बाह्य चीजों की प्राप्ति में लगा रहे. और इसके कारण एक तो वो वेस्ट होती है और फिर अल्टीमेटली हमें लगता है कि मेरे में खोखलापन आ गया. आज देखिए तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन इनर वैक्यूम है. परंतु अगर हम इनर एनर्जी को यूज करने लगे तो एक तो वह सेव होगी, थोड़ी सी एनर्जी में आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे और इनर एनर्जी से आपको सही दिशा भी मिलेगी.
0: सर, एक मैं को बात ये जाननी है कि इनको प्राप्त करने के लिए एनर्जी तो यूज करनी पड़ेगी. सी, अगर मेरे को गाड़ी चाहिए, चलो मैं उसे ये नहीं कहूँ कि मुझे सुख प्राप्त होगा, पर गाड़ी तो चाहिए ना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कुछ भी है, या प्रोफेशनली सक्सेस तो चाहिए, रिश्तों में भी संबंधों में भी मधुरता चाहिए, या बंगला कुछ एक कम्फर्ट चाहिए आज के वक्त में, तो उसको करने के लिए ऊर्जा चाहे वो बाहर की, मेरी अपनी ही ऊर्जा मुझे इस्तेमाल तो करनी ही होगी।
1: आज मॉर्निंग में हमने किसी से पूछा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा बच्चा, अच्छा मकान, एंड देन ही सेड आई कैन गो ऑन, द लिस्ट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। आई सेड ये लिस्ट कब तक चलेगी? ही सेड जीवन भर मेरे पास ये लिस्ट बहुत लंबी है। एंड लिस्ट में हर वर्ड आ रहा था जो चाहिए, क्योंकि ये सब होगा तो मैं खुश होऊंगा, एंड अच्छा चाहिए। यू नो द बेस्ट पार्ट वॉज द वे ही केप्ट सेइंग अच्छी पत्नी, अच्छा बच्चा। नो वेयर ऑन दिस लिस्ट आई एम देयर कि मैं अच्छा ना, आप अच्छे, आप अच्छे, बस दैट इज That is the only where the what you said, what mistake have we made? Then that is the mistake.
0: मैं अच्छी नहीं हूँ.
1: See, it's not कि मैं अच्छी नहीं हूँ, तो वो अच्छे नहीं है. सब जो हैं, जैसे हैं, वो अच्छे हैं. लेकिन वो अच्छे चाहिए मतलब जो इमेज मैंने क्रिएट किए वैसे वाले वो चाहिए. अगर वो वैसे वाले होंगे then I will be happy. तो पूरा कंट्रोल किसके पास चला गया?
0: उस इमेज पे, उस इमेज की प्राप्ति पे,
1: उनके पास, कि वो वैसे होने चाहिए तब मैं खुश होऊंगा. अब ये नहीं होने वाला है. लेट अस वेक अप टू दिस रियलिटी. अवेकनिंग इज दिस, वेक अप, उठ जाएं, जागृत हो जाएं कि ये जो हम बार बार अच्छी पत्नी, अच्छा दोस्त, अच्छा बच्चा, ये अच्छा अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम क्रिएट कर रहे हैं. और हम कहेंगे हम तब खुश होंगे जब वो रिश्ता इस डेफिनेशन में फिट होगा.
0: तो हम एक्सेप्ट तो फिर भी करके बैठे ही हैं.
1: सी, तो फिर हम खुश नहीं है ना.
0: वो अब
1: सी अगेन, आपने तो अपनी ना, आपने अपनी शॉपिंग लिस्ट में ये लिखा कि मुझे ये चाहिए, तो अगर आपको जब तक वो नहीं मिलेगा देन यू आर वेरी एम्प्टी.
0: तो हम चाहत भी सी हम See? चाहत भी हम खत्म कर दें.
1: See, it's not about चाहत खत्म
0: कर दें. People are saying, you know, कि बिना चाहत, उन्हीं से अगर आप आगे बात करेंगे तो उनसे कहेंगे चाहत तो खत्म करनी, अगर चाहत भी ना रही तो लोग बोलते हैं हमारे पास फिर बचा क्या, एक वही ड्रीम से तो लेकर चल रहे हैं.
1: सो देन वी आर ऑलवेज एम्प्टी ना, जैसे बात हुई कि हमेशा मेरा हाथ ऐसे है ना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये आएगा देन आई बी बेटर, ये आएगा देन आई बी बेटर. और वो उसने बहुत क्लियरली कह दिया लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, कि मेरे जीवन के एंड तक ये लिस्ट रहने वाली है. मतलब एंड तक मैं कैसे रहने वाला हूँ? ऐसे रहने वाला हूँ. मतलब मैं एंड तक भी, एंड वट एवर वी कॉल, कि जब तक मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ आई एम नॉट गोइंग टू बी कंटेंटेड, एंड देन आई एम गोइंग टू से, एंड देन अब ही विल गेट अ कार, ही विल गेट अ जॉब, ही विल गेट मैरिड, बट डेफिनेटली ही वॉन्ट फील कि हिज वाइफ इज द अच्छी वाइफ. Because no one is going to fit into that perfect.
0: आज वैसे fit कर भी जाएगी तो कल तो होगा ही होगा.
1: You know, तो वो discontentment हमेशा बनी रहेगी. Life skills मतलब मैं अपने अंदर कौन सी skills create करूँ जिससे चाहे वो job है, चाहे वो कोई रिश्ता है, उसमें मैं कैसे अपने आप को mold करके अपने आप को contented और अपनी happiness खुद create करूँ. This is important.
2: चाहत बुरी नहीं है, परंतु हम क्या चाहते हैं वहाँ गड़बड़ वहीं पर है, क्योंकि हम बाहर की चीजें चाहते हैं और उसका कहीं अंत नहीं है, वहाँ फुलफिलमेंट होनी ही नहीं है. इसीलिए मैंने आउटर एनर्जी कहा. अगर अंदर की चाहत हो कि मुझे शांति चाहिए, मैं एक बार बिल्कुल संतुष्ट हो जाऊं, तो फिर सब कुछ मिल जाएगा. एक बहुत अच्छी बात कही गई है, मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है. लोग ये सोचते हैं कि मुझे यह सब मिल जाएगा फिर मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, परंतु सत्य बिल्कुल इससे विपरीत है. पहले आप जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ और फिर आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिलेगा. और यही स्किल्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भी कैसे स्किल्स हमारे में आ जाए कि हम जहाँ है सचमुच सेटिस्फेक्शन का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, तब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब वो जो आर्ट है, क्योंकि लाइफ इज एन आर्ट है ना, वो बैलेंस करना पड़ेगा. वो बैलेंसिंग कैसे होगा?
1: जैसे गिरीश भाई ने कहा ना, क्या चाहिए. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग नाउ चेंज द इक्वेशन. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, लेट्स से मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए. ओके, लेट्स सो दैट वो व्यक्ति पर नहीं आप जिम्मेवारी रख रहे हो, आप ये कर रहे हो कि मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए. और ये अच्छा रिश्ता क्रिएट भी कौन करेगा? आई विल क्रिएट दैट. सो दैट आई एम नॉट के मुझे कुछ नहीं करना, यू नीड टू बी द परफेक्ट whoever, a wife, a child, a friend for me, then I'll never be happy. Because then I'm giving, like he said, the control totally to you. But if I say, मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, and I am going to work on creating this good relationship, then the control comes back totally into my hand.
0: That's what the problem is, that I've been doing it all my life, and अब मैं इतना थक चुका हूँ, तभी तो मैं, see, चाहत में मेरे को ही काम करना है, तो फिर चाहत क्या? see, again, see, if my dream,
1: आपको कुछ भी चाहिए हो बिना काम करे मिलेगा क्या? कुछ भी आप क्या बिना पढ़े बोलेंगे क्या मुझे पास होना चाहिए?
0: कितने लोगों का ये ड्रीम होता है, लेकिन
1: पास तो नहीं होंगे ना. कुछ भी चाहिए तो वो ऐसे नहीं आ रहा ना. कुछ भी चाहिए मीन्स आई विल वर्क टुवर्ड्स इट एंड आई विल गेट दैट, बट आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे क्या चाहिए. पास होना चाहिए स्टडी. ऐसा होगा नहीं कि आप एफर्ट डालेंगे, स्टडी करेंगे और आप पास नहीं होंगे, तो ऐसा होगा नहीं ना. तो हर एग्जाम में आपको अगर करना है, पास होना है, तो बिना हमारे एफर्ट किए नहीं होगा. आपने कहा हम जीवन भर ये करते आए हैं, एक्चुअली नॉट. जीवन भर हम सिर्फ वेट करते आए हैं कि दूसरे वो करेंगे जो मुझे चाहिए. सो देन हमने सिर्फ वेट किया एक्चुअली,
2: और हमने अपनी लाइफ मिजरेबल बनाई.
0: लेकिन एक जो अभी आपने बात कही कि आई थिंक इट्स समथिंग विच नीड्स टू वर्क ऑन, कि एक्चुअली अगर मैं ड्रीम की बात करूँ, चाहत की बात करूँ, तो मैं बिना कुछ किए ही चाहती हूँ कि वो हो जाए. ये तो एक है, लेकिन कई बार मैं उसको उसकी प्राप्ति के लिए कर्म भी करती हूँ. करते हैं हम कर्म और वो नहीं सफल होता. मतलब जैसे पास होने की बात है, या अच्छी नौकरी की बात है, या फिर प्रोफेशनली बहुत ग्रो करने की बात है, जो चाहत है, जो ड्रीम है कि मेरे को यहाँ पहुंचना है, और उसके लिए मैं मेहनत भी करता जाता हूँ, बट वन आई एम नॉट एबल टू रीच, एंड बाय द टाइम आई रीच आई एम सो टायर्ड दैट इट डजंट मैटर.
1: That's because maybe the journey had too many obstacles and too many hurdles, and I was not driving right. You know, आप एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव पे तो जा रहे, लेकिन आपने कैसे ड्राइव किया उस जर्नी पर. एंड में जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, यू माइट बी टोटली जस्ट एग्जॉस्टेड, क्योंकि यू ड्रोव द रॉन्ग वे, आपने किसी को टक्कर मारी, यहाँ किया, बार बार ब्रेक बहुत जोर से लगाई, बहुत ज्यादा हॉन्किंग की, हाउ आर यू गोइंग टू फील एट द एंड ऑफ द जर्नी. तो वो ही आज हो रहा है. आपको प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, इट्स अ जर्नी, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हर रोज ऑफिस जाकर आप लोगों पर चिल्ला रहे हैं, हर रोज आप चिंता कर रहे हैं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, हर रोज आप सोच रहे हैं मेरे से पहले कोई और उस पोजीशन पर नहीं पहुंच जाए. तो जो गिरीश भाई ने कहा, इंटरनल जो एनर्जी आप सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द क्वालिटी. तो फिर जब आपको वो पोजीशन, वो टाइटल मिल भी जाएगा, यू आर क्वाइट ड्रेन्ड आउट बाय द टाइम यू आर रीच्ड देयर. एंड फिर आपको वो टाइटल मिल गया, विद इन अ वीक यू आर ऑलरेडी एमिंग फॉर योर नेक्स्ट टाइटल, एंड फिर अगेन अ न्यू जर्नी, अगेन वो जर्नी ऐसे ही होगी. तो फिर आपको वो एक हफ्ता नहीं याद रहता जब आपको अच्छा लगा वो टाइटल मिलकर, आपको वो पूरी जर्नी जो एग्जॉस्ट कर देता है.
0: टाइटल तक पहुंचने से पहले मेरा नेक्स्ट की इच्छा हो चुकी.
1: वो तो हो जाता है ना.
2: व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि हम आउटर एनर्जी को यूज कर रहे हैं,
1: बाहर का हां एक्चुअली चाहिए कि लिस्ट में पहले तो बहुत क्लियर हो जाए कि क्या चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवन अगर चाहिए की लिस्ट है, ये चाहिए तो क्यों चाहिए. लेट्स कीप कमिंग डाउन डाउन डाउन. ये चाहिए क्यों चाहिए. आपको पोजिशन चाहिए तो क्यों चाहिए. बिकॉज लोग अप्रिशिएट करेंगे, वो मान शान मिलेगा. अच्छा वो भी क्यों चाहिए, क्योंकि जब वो मिलेगा देन आई विल फील गुड. इट हैज टू कम डाउन टू आई विल फील गुड. आप चाहे कोई भी बात ले लो, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल सक्सेस है, या चाहे वो गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी है,
0: इट मेक्स मी फील गुड.
1: तो चाहिए लिस्ट में एक्चुअली तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए, एंड दैट इज फीलिंग गुड. एंड नाउ वी वॉन्ट टू ट्राई कि पहले हम फीलिंग गुड क्रिएट कर लें, देन वी विल एम एंड बाकी सारी चीजें जो चाहिए.
2: और भी नहीं, और एक देखो बात की भी, साइकोलॉजी में माना गया है कि भी हार्डवर्क

0: If I learn to feel good, will I get everything I'm aiming
1: for? Yeah, definitely.
0: Promise?
1: Promise, promise. ये बहुत deep की बात है. चाहे तो अभी आपको बता दूँ, it's very deep thing. Maybe आगे हम discuss कर पाएंगे इस बात को.
0: Yeah, we'll ऐसा learn माना the process.
1: हाँ हाँ नहीं, इसमें पूरा एक आध्यात्मिकता में माना गया है. लोग ये समझते हैं बहुत hard work करना पड़ेगा. कहते आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. सिर्फ आवश्यकता है कि भी इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर अगर हम उस चीज को क्रिएट कर पाए अपनी साइकी में, तो आउटर वर्ल्ड में भी वो क्रिएट होता है. जिसको कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि बस अपने थॉट प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर दो तो उसी प्रकार के वाइब्रेशन सारे कॉस्मोस में भी क्रिएट करोगे, जिसको सिंक्रोनिसिटी कहते, और वह चीज आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी. जिससे भी रिश्ते की बात कही ना, भी बस आपके मन में रियल कि मुझे ऐसा एक अच्छा रिश्ता चाहिए, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनी, इंटरनल स्टेट बनी, अंदर एनर्जी अच्छी बनी, तो ऑटोमेटिक ऐसे व्यक्ति के आप संपर्क में आएंगे हु विल बी राइट पर्सन, जिसके साथ आप अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, सदा के लिए सुखी रहेंगे. तो सिंक्रोनिसिटी को यूज करना है, सिर्फ ना टेंशन से भागा दौड़ी करो ये प्राप्त करना इसे करना, उसे तो एंजाइटी हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है,
0: मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो क्या होगा, मिल गया तब भी चला जाएगा, ये जो सारे एफर्ट्स, ये जो पूरी एनर्जी इसमें जा रही है. तो डॉक्टर पटेल, आपने कहा स्मार्ट वर्क, हम हार्ड वर्क करते आ रहे हैं जीवन में, स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे?
1: वही आर्ट सीखने की जरूरत है. जैसे भी स्मार्ट वर्क के कुछ भी चीजें हम देखें, तो एक तो हमें अपने विचारों को मैनेज करना सीखना होगा. हम औरों को मैनेज करने का सोचते हैं, परंतु अपने विचारों को मैनेज करने का नहीं सोचते. और एक स्मार्ट वर्क बहुत ही जरूरी है कि औरों को परिवर्तन नहीं करना है, मुझे परिवर्तन करना है. कहते कि भाई अमेरिका में एक लड़के का पॉलिटिकल फैमिली में जन्म हुआ, वह करीब 25 साल का हुआ तो उसने सोचा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारी दुनिया को बदल दूंगा. 45 इयर्स का हुआ, सोचा कि भाई शायद सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकता हूँ, जरूर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा, सारे अमेरिका को बदल दूंगा. 55 का हुआ, सोचा शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मेरे स्टेट का गवर्नर जरूर बनूंगा, सारे स्टेट को बदल दूंगा. 75 का हुआ, सोचा शायद स्टेट को बदलना भी मुश्किल, कम से कम अपने गांव को तो जरूर बदल दूंगा. 85 का हुआ, मरने को था, सोचने लगा अरे रे अपने आप को ही नहीं बदला, अपने आप को बदल देता तो बहुत अच्छा होता. ये फाउंडेशन वहां है, अपने आप को बदलो सारी दुनिया को बदल दूंगे.
0: इज इट पॉसिबल?
2: दैट इज व्हाट वी सेड, फील गुड, जो आपने कहा गारंटीड कि वो सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भाई साहब ने कहा पक्का मिलेंगी, लेकिन 0.1% चांस अगर नहीं मिले, यू आर स्टिल फीलिंग गुड. दैट्स व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ये गारंटी है कि फीलिंग गुड जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में है. सी, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे हाथ में हैं, और कुछ एक बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं पहले अपनी सारी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस कर दूँ जो मेरे कंट्रोल में है. सी, इट्स अगेन लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, सिर्फ मेरी गाड़ी मेरे कंट्रोल में है. इट्स नॉट अ गारंटी कि बाकी लोग ठीक ड्राइव करेंगे, इवन अगर मैं उनको खड़े होकर ड्राइविंग की सारी स्किल्स वहाँ पर अच्छी तरह से बताऊँ. सेम थिंग इज हैपनिंग, हम आसपास के अपने लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो यू नो स्पाउस है, चाहे वो कलीग है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो वही करेंगे जो हमें ठीक लग रहा है, क्योंकि दे आर चूजिंग हाउ दे वॉन्ट टू ड्राइव. नाउ आई हैव टू चूज हाउ आई वॉन्ट टू ड्राइव, एंड वो गारंटी है कि अगर मैं अपनी गाड़ी पर पूरी तरह से फोकस करूँ, मैं रीच करूँगी अपनी डेस्टिनेशन विदाउट अ सिंगल एक्सीडेंट. दैट इज डेफिनेट, इवन इफ एवरीवन अराउंड मी इज ड्राइविंग बैडली, इट्स स्टिल पॉसिबल. लेकिन उसके लिए चाहिए होती है 100% कॉन्सेंट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे. लेकिन अगर सब लोग आसपास गलत चला रहे हैं और मैंने 2 मिनट भी थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया कि वो कैसे चला रहा है, आई बैंग इनटू समवन, तो वो फुल फोकस
0: कोई और आएगा.
2: यस, फुल फोकस अगर आपको अपनी एनर्जी पे हो गया, तो फिर आप पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे विदाउट अ सिंगल स्क्रैच हेयर. That's possible, and that's the purpose of life, to feel good. Good. And to feel happy.
0: Dr. Patel, एक अच्छी assurance मिल रही है हमें कि पूरी श्रृंखला में हम ये तो जानना चाहेंगे और ये सीखेंगे कि feel good कैसे करना है, but और क्या कुछ शामिल होगा आने वाली कड़ियों में?
1: और तो मैं समझता हूँ feel good के लिए जरूरी है कि विचारों को बदलना, क्योंकि हमारे विचार ही सब कुछ करते हैं. कहेंगे कि जो बहुत बड़ी कला

0: है वह है थॉट मैनेजमेंट, वी कैन कॉल इट इवन माइंड मैनेजमेंट। और माइंड मैनेजमेंट के लिए जरूरी चाहिए सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस, तो वह सेल्फ एस्टीम को हम कैसे डेवलप करें। और भी कुछ सचमुच ऐसी लाइफ स्किल्स की भी जिसे डेवलप करें, रिलेशनशिप की स्किल्स है, या तो अपने आप को चेंज करने की स्किल्स है, अंदर में भरपूरता को कैसे प्राप्त करे वह। और यह सब हो सकता है आध्यात्मिकता से। आज मूल चीज है, आज लोग धर्म की ओर तो मुड़े हैं परंतु आध्यात्मिकता का सत्य अर्थ नहीं समझे। तो आध्यात्मिकता को हम और डीपली समझेंगे, मेडिटेशन के साइंटिफिक बातें क्या है उसको भी समझे, ताकि 21वीं सदी में भी लोग मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगे।
1: आज हम में से मेजोरिटी कोई ना कोई डिजीज के शिकार हैं, और कुछ नहीं तो दर्द यहाँ वहाँ तो लगा ही हुआ है, किसी के बैक एक है, किसी के नी पेन है। कैसे हम इस पेन को मैनेज करें विद द पावर ऑफ द माइंड, क्योंकि बहुत सारे हम स्कैन्स कराते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, तो डॉक्टर कहता है थिंक अबाउट इट, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज मैंने यहाँ कभी देखा नहीं। तो देन आई लर्न टू लिव विद द पेन, ना वी वॉन्ट टू हील दैट पेन। तो माइंड का बॉडी पे असर, फूड का माइंड पे असर, बॉडी पे असर, रिलेशनशिप्स पे असर, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक बहुत बड़ी चीज़ जो आजकल हो रही है, फियर, जिसकी वजह से हम बहुत सारी और चीज़ों पर कंट्रोल दे रहे हैं, वेदर इट इज़ एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज़ ऑल काइंड ऑफ साइंसेज आउटसाइड। तो कई बार हम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, हर रोज़ उनसे पूछ रहे हैं हम ऐसा करें या नहीं करें, हम आज का दिन ठीक है या आज का दिन ये ऐसा है, ये टाइम ठीक है या ये टाइम गलत है। तो पूरी गाड़ी का कंट्रोल किसको दे दिया है, जस्ट टू समवन एल्स। तो भले ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में रहते हुए भी मुझे फिर भी कैसे चार्ज लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो तंत्र है, इन सब इन्फ्लुएंसेस में रहते हुए हाउ टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टिल बी द मास्टर ऑफ माय लाइफ, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू।
2: सो लाइफ स्किल्स के इस पूरे श्रृंखला में आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ओम शांति। तुझे क्या चाहिए जिंदगी, बहुत बार अपने आप से कहते हैं, और आज तो हम इस मुकाम पर हैं, इस मोड़ पर हैं कि सचमुच लगने लगा है कि जिंदगी एक कॉम्प्रोमाइज है, थके से हुए हैं, लेकिन इस थकान को दूर करना है। हम में से हर कोई अच्छा फील करना चाहता है, फील गुड फैक्टर बहुत बार सुना, लेकिन आज से शुरू होती है ये जर्नी। हम जानेंगे कि कैसे अच्छा महसूस करते करते जीवन के हर सुख की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे अभी तक जो पूरी डिपेंडेंसीज बाहर थी, धीरे धीरे एक एक करके ये चार्ज अपने हाथ में लेंगे प्रैक्टिकली। कोई बात मन में है, कोई सवाल है आप इस श्रृंखला में जिसे चाहते हैं कि हम लेकर आए, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे भी बहुत से स्किल्स जानेंगे जिंदगी के बारे में, जिंदगी से जुड़ी हुई। अभी आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।